0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमार्ट, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, 03-55569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराब और मेहराब एफ और
3: तमाम बेहतरीन सॉन्ग,
4: चीरे खां बगैर चर्बी जा गुड़।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह महमूद पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां इमाम जो मेज़बान नेमत अल्लाह जूणे जो अवां जी खिदमत में हाज़िर हाज़िर साईं जा गुलन जा तमाम घणा नमूना किस्म ऐं नाला आहिनि। मिसाल गुलाब, चमेली ऐं मोतियो, सूरजमुखी ऐं रतन जोत, नरगिस, गेंडो, राति जी राणी, ॾींहं जो राजा वग़ैरह वग़ैरह। ऐं जेकॾहिं कंहिंखे थोरी टोक थींदी आहे त जेकॾहिं ख़ासि करे थुल्हे माण्हू आहे, मोटो माण्हू आहे, त उनखे मज़ाक में चयो वेंदो आहे त अदा या अदी तूं गुल आहीं पर गोभीअ जो गुल। ऐं गुलनि मां दवाउनि जो कमु बि वरितो वेंदो आहे ऐं सिम जा गुल पंहिंजे ॿूटे में ई तमामु सुहिणा लॻंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे बेदर्दीअ सां न टोड़जे, न मरोड़जे ऐं रस्तनि ते उनखे फिटो न कजे। गुल सूंहं जी अलामत आहिनि ऐं उन जी हिफ़ाज़त करणु असां सभिनी जो फर्ज़ आहे। ख़ासि करे पार्कनि में, बाग़ीचनि में जेके गुल हूंदा आहिनि त उन जे तमामु ॿूटनि में सुहिणा लॻंदा आहिनि ऐं उन जी ख़ुशबू हूंदी आहे। ख़ासि करे नंढा ॿारड़ा उनखे पटींदा आहिनि पर ख़ासि करे वॾा बि पंहिंजे उन जी जेको आहे आदत जेका हूंदी आहे पटड़े सिंघण जी ऐं ख़ुशबू वठी करे वरी उनखे उछले छॾींदा आहिनि। त कोशिशि कयूं त जीअं पंहिंजो गुलाब जा गुल सुहिणा हूंदा आहिनि, ॿारड़ा गुलनि वांगुरु हूंदा आहिनि, त उन्हनि जी असांखे पाण खे हिफ़ाज़त करणी आहे। जो ॿारड़ा बि गुल आहिनि, गुलाब जा गुल आहिनि ऐं गुल त हूअं ई गुल आहिनि ऐं गुलाब जा गुल वधीक सुहिणा लॻंदा आहिनि।

0: It's 10:30.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
7: आ अंगन जी तू कयो गदी की गुजारियो गा अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
7: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

औरत पंहिंजे पंहिंजे रूप में हैसियत में हिकु अलॻि मक़ाम ऐं अहमियत जी मालिकणी आहे। औरत जे बारे में असां ऐं अव्हां केतिरनि ई ॾाहनि जा कौल ॿुधा बि आहिनि ऐं पढ़िया बि आहिनि। मिसाल अमरता प्रीतम चयो त औरत जो को बि घर नाहे हूंदो, ऐं मूंखे अमरता प्रीतम जो उहो जुमिलो सम्झण में ज़रा दिक़त थींदी आहे त हिन इहो बि जुमिलो कहिड़े हवाले सां चयो। ऐं हिकु ॾाहे चयो त ॾाहे माण्हू जी तारीफ़ उन जे गैर मौजूदगी में, औरत जी वरी तारीफ़ उन जे साम्हूं कंदा कयो। हिकु ॾाहे जो वरी औरत बाबति अजीब कौल आहे त हसीन औरत अखियुनि लाइ जन्नत, दिलि लाइ दोज़ख ऐं खीसे लाइ तबाही हूंदी आहे। हिकु ॾाहे कहिड़ी न भली ॻाल्हि कई त औरत जा लुड़क उन जी मुस्कराहट खां वधीक असराइता ऐं वणंदड़ हूंदा आहिनि, छो त औरत पंहिंजो कमज़ोर हूंदी आहे ऐं औरत में हिकिड़ो अहसास हूंदो आहे। पर अक्सर जेकॾहिं औरत कंहिं बि पंहिंजे महबूब सां प्यारु कंदी आहे ऐं अणघणो प्यारु कंदी आहे, अणथक प्यारु कंदी आहे, पर अहिड़ा प्यारु करण वारा वरी औरतुनि खे ज़रूरु बेवफ़ा बि लॻी वेंदा आहिनि।

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां हिन हफ़्ते अवां खां को बि सुवाल कोन कयोसीं ऐं पाण संगत खे कंहिंखे बि तकलीफ़ कोन्हे। त कुझु विचड़ा परेशान बि थींदा आहिनि ऐं सुवाल ॻोल्हण में हुनखे तकलीफ़ थींदी आहे, ॾुखियाई थींदी आहे, पर हिन हफ़्ते असां सिर्फ़ु अवां दोस्तनि जा नाला लिखियासीं जेके अवां ताईं पहुचाईंदासीं। जेके दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थिया आहिनि हुन जा नाला ज़रूरु खणंदासीं ऐं असां हुन जा वॾा थोराइत आहियूं जेके असांजा साइलेंट लिसनर आहिनि, जेके असांखे ॿुधंदा त आहिनि, कॉल बि न आहिनि कंदा, मैसेज बि न आहिनि कंदा, कोई बि इनबॉक्स में या फेसबुक ते बि न आहिनि ईंदा, पर असांजो प्रोग्राम मुकमल ॿुधंदा आहिनि। अहिड़ा बुज़ुर्ग, अहिड़ा असांजा नंढिड़ा वॾड़ा अदड़ियूं अमड़ियूं प्रोग्राम असांजो ॿुधंदियूं आहिनि, मुकमल प्रोग्राम ॿुधंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो साथ असां सां तमामु घणो हूंदो आहे, पर असांजे प्रोग्राम में उहे शामिलु न हूंदा आहिनि। उनजी वॾी महिरबानी। जेके असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियनि था ऐं ॿिनि कलाकनि जे सफ़र में असांजो साथ ॾियनि था, असांजे सवाल जो जवाबु ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजा कोशिशि करे नाला लिखाईंदा आहिनि, उनजी बि वॾी महिरबानी। हाफिज़ लखमीर ढिलू मोरे खां भाउ कॉल कई, उनजी वॾी महिरबानी। एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान जुणे जो, मुजीब रहमान जुणे जो, नारो स्टाप ऐं गुमीर बख़्श, अब्दुरहमान लिगारी मिठा खान ऐं तालिब हुसैन लिगारी लटको मोरी खां, ऐं रामचंद कोली, कमलेश कुमार कोली ऐं गोविंद गुल कोली ॻोठ नोटो ज़िले थरपारकर खां, ख़ालिक लाशारी जलोरी मीरपुर ख़ासि खां, हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो खोड़ा गंबट खां, मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां, क़ुर्बान अली ख़ासकिली झंडो मरी खां, रियाज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां, इरशद अली कोराई लाड़काणे खां ऐं फ़तेह मोहम्मद कनासरो, फराज़ अहमद फारूक अहमद कनासरो ऐं उनसां गॾु आहे सैद अहमद शाह बुखारी ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां, ऐं ज़ोहेब अली कटबर, जुनेद कटबर लाड़काणे खां, आमिर जिंजी, अतर हुसैन जिंजी नोटो जी नगरी खां, ऐं यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां, ज़मीर हुसैन मीराणी, फिदा हुसैन मीराणी, तारिक हुसैन मीराणी ॻोठ मसूब खां, ऐं नौंदरो चौक लाड़काणे खां, शहज़ाद अज़ीज़ सूमरो ऐं अब्दुरहमान जागीराणी लाड़काणे खां, मोहम्मद ख़ान कुंभार हाले पुटरा स्टाफ खां, ऐं हाफिज़ मोहम्मद यूनिस बबर सकरण खां। दोस्तनि जी तमामु वॾी महिरबानी। ऐं हाणे सोमेरा अली जो कलाम आहे, गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी समीन, प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा सुमेर अली जे इन कलाम सां अवां सां थोरियूं घड़ियूं आहिनि जेके अवां ताईं पहुचाईंदासीं। अवां जूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं जेके थियूं उनमें असां अवां खां ज़रूरु मोकिलाईंदासीं। प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि त वरी ईंदड़ हफ़्ते अवां सां ज़रूरु मुलाक़ात थींदी ऐं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त ऐं मुमताज़ मौलाई जो कलाम ॿुधंदा रहो, इंजॉय कंदा रहो।

पार्टीअ नू लीग जा नुमाइंदा शामिल मोहसिन नकवी, राणा सनाउला, अमीर मकाम, श्री रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज जखरानी पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदा। पीटीआई वफ़्द जो ऐलान न कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां रेलवेज़ वारे वज़ीर मोहम्मद हनीफ़ अब्बासी जी मुलाक़ात। हनीफ़ अब्बासी वज़ीर आज़म खे रेलवे जे मामलनि ऐं तरक़ियाती मनसूबनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। वज़ीर आज़म जे मुसाफ़िरनि जी सहूलियत ऐं हिफ़ाज़त खे यकीनी बणाइण लाइ सराहता क़दम खणण जी हिदायत कई। शहबाज शरीफ चयो आहे त पटड़ियुनि जी वक़्त सर मरम्मत ऐं सार संभाल यकीनी बणाइण लाइ अमली क़दम खया वञनि। रेलवेज़ जी आमदनीअ में वाध लाइ फ्रेट सर्विस खे वधीक फ़ाल करण जी ज़रूरी आहे। रेलवे जो निज़ाम बहितर बणायो वञे। हुकूमत पेट्रोल महांगो ऐं डीज़ल मामूली सस्तो करे छॾियो। पेट्रोल 3.26 रुपया महांगो थियण बाद 390.06 रुपया फ़ी लीटर थी वियो। डीज़ल 1.01 रुपयो सस्तो थियण बाद 399.34 रुपया फ़ी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी करे छॾियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल, बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वही आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो।
3: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग, कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए।

0: मिले थी मोटरसाइकिल थी कार कर देगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई बनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

शहर से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। ये आशिकी इंटरव्यू वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, शेर से हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिकटॉक सेट कूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइज अक्सा कॉस्मेटिक्स। और सुपर वाइज अक्सा कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये खूबसूरती वाला खूबसूरत सा सफर जो कि पूरी पूरी एक बजे तक जारी और सारी रहेगा, आप मुझे सुन सकते हैं डेली बेसिस पे 11 से लेके 1 बजे तक। और मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में वही मंडे टू थर्सडे कह दिया, लेकिन ये झूठ है, आप मुझे सुन सकते हैं डेली बेसिस पे 11 से लेके 1 बजे तक। और अगर हम प्रोग्राम में आगे चलते हैं और वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जा रहा है 11:14 जो कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त है, तमाम तर लोग ही घड़ियों में बस रहे हैं और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक पर हैं, जिसमें जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बेटर है बिनवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हुए ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस ये खुदा खैरियत है मौजूद और तो खुदा खैरियत है मतलब वो तमाम तो लोग जो लोग यहाँ साल के अहम को कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पर जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ डिफरेंट कुछ अलग कुछ हटके कर रहे हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियां और शहरों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मैं गुजारू घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे पुरस्कार या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे बखैर आमिले जी आनी सब बिस्मिल्लाह बंजार शानी हाँ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स। और सुपर वाइट के क्या कमाल के सुपर से भी ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो अगर आप भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके थक चुके हैं और पक चुके हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसे क्वालिटी वाले या मयारी प्रोडक्ट्स हमें मिले जिनको इस्तेमाल करके हमारी जो असल खूबसूरती है वो निखर के सामने आए, तो बिल्कुल सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मौजूद हैं जी, जो कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से क्वालिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हुए और मयार का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हुए बनाते हैं। तो सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुपर वाइट के सारे ही प्रोडक्ट सुपर से भी ऊपर हैं। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट ये मैं क्लेम जहां तक मैं क्लेम कर रही हूँ, जब आप लोग यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग इससे ज्यादा क्लेम कर रहे हो कि हाँ जी हम आपकी बात से बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन हैं और एग्री करते हैं कि हाँ जी ये वो प्रोडक्ट है जो कि आपने बताए हैं और जो भी आपने इनके बारे में बोला है वो कुछ कम सही बोला है, हमने जब इसको इस्तेमाल किया है तो हमें थोड़े ज्यादा सही रिजल्ट्स मिले हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर आपने यूज करने हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स तो आप लोगों ने मार्केट जाना है और ले आना है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को। अब इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हमेशा जब आपको अपनी स्किन को एक अच्छा प्रोडक्ट देना होता है या अच्छा मतलब कि स्किन को बनाना होता है तो आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते अपनी स्किन के मामले में या अपनी खूबसूरती के मामले में कि हमें क्या यूज करना चाहिए, तो एक बार अपना दिल बड़ा करके ये अच्छा सा डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन है जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करने का। और सुपर वाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जी सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं जी, और सुपर वाइट का राइस फेस वॉश भी आता है। तो अगर आप कोरियन ग्लास स्किन चाहते हैं तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम को यूज करेंगे, ठीक है जी।
तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में कॉलेजन भी मौजूद है और सुपर वाइट की ये राइस ब्यूटी क्रीम के साथ साथ इनका सोप भी आता है जी, सुपर वाइट राइस कॉलेजन सोप। इसके अलावा सुपर वाइट राइस कॉलेजन फेस वॉश भी आता है। इसके अलावा सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम सिरम भी आता है। ठीक है जी, तो ये राइस का कॉलेजन सिरम है जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो ब्यूटी क्रीम है उसका अलग से आपको सिरम भी मिल जाता है। और इसके अलावा जी सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आता है, सुपर वाइट का ऑयल फ्री सोप भी आता है। इसके अलावा सुपर वाइट की ऑयल फ्री क्रीम भी आपको मिल जाती है। तो जिन लोगों की स्किन टाइप ऑयली है वो इजीली इस क्रीम को यूज कर सकते हैं और इजीली सुपर वाइट के ऑयल फ्री फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को एक्नी का इशू रहता है, और एक्नी रहती है, एक्नी जाती नहीं है, आती रहती है, आती जाती रहती है, तो ये मसले मसाइल अगर आपके साथ रहते हैं एक्नी वाले, तो एक्नी चाहे आपकी किसी भी हो, लाइक निशान छोड़ने वाली एक्नी हो, पस वाले पिंपल्स होते हैं वो हो, या फिर दूसरी ही टाइप की कोई एक्नी हो, वो जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं या जो छोटे छोटे से दाने होते हैं जिनको हम गर्मी दाने भी कहते हैं, तो अगर फेस पे हो जाए तो वो पिंपल्स बन जाते हैं, तो अगर वो वाले हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि एक्नी की सारी टाइप्स में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और वो क्या है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम। सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम को भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा और मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा। इसके अलावा जी सुपर वाइट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें सुपर वाइट की कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी क्रीम भी आती है, और साथ में कोरियन फॉर्मूले की स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी आता है जी। और इसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की एंटी डलनेस टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है जी। इसके अलावा सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम, और साथ में इसका फेस वॉश, और ये सारे प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, और इन्हीं के बारे में हम पूरे प्रोग्राम में बात भी करने वाले हैं और प्रोग्राम को हम आगे भी लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ जी हम सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला कलाम, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे की मुनासिबत से हम फ्राइडे का जो शो है वो कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि इसमें आप लोग सूफी कलाम या फिर हमदिया कलाम या फिर नात वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है जी, तो जितने लोग मुझे कॉल करेंगे, हमारा जो सेगमेंट होता है सुर लगाओ गाना सुनाओ, उसमें आप लोग नात या कोई कलाम भी सुना सकते हैं।

जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. और कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर. आप लोगों को मिलती है जी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग जो कि होती है जिंदगी गुलजार है की, ठीक है. और जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर भी आप लोग इसको देख सकते हैं जी. और इसके अलावा जी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे और मेरा साथ दे सकते हैं. और जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. और इसी के साथ हम प्ले करेंगे एक और कलाम, और कलाम के साथ हम चले जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ कलाम सुनते हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارے نا خشک ائی بیرونو کی سکن ہن انہی جلائے چھا ڈیمیج ائی ڈل سکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں ऐ कोजी कैसे फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
4: सुपर वाइट के राइज ब्यूटी क्रीम को और सुपर वाइट के राइज ब्यूटी फेस वॉश को जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन देता है जी और कोरियन ग्लास स्किन आप लोग अपनी स्किन को बना सकते हैं अच्छा इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताती हूँ जी और सबसे पहले आप लोग ये सुन लें कि सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को मजीद और इनहेंस करने के लिए डबल करने के लिए आप लोग इसमें सुपर वाइट राइज कॉलेजन सीरम ऐड कर सकते हैं जी ठीक है आप लोगों ने एक तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम को लेना है और साथ में सुपर वाइट के राइस सेरम को लेना है और सेरम के साथ साथ आप लोगों ने सुपर वाइट राइस कोलेजन फेस वॉश को भी लेना है ये तीनों चीजें ले लेंगे खूबसूरती का मुकम्मल पैकेज आप लोग खरीद लेंगे और खूबसूरती का ये मुकम्मल पैकेज जो कि आपकी खूबसूरती को खूबसूरत बनाएगा और आप खूबसूरत लगेंगे दिखेंगे ठीक है तो करना क्या है आप लोगों ने सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोगों ने सुपर वाइट राइस सेरम को ऐड करना है ठीक है सारा ऐड कर दें और ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर दें मिक्स करने के बाद रख लें इसको स्टोर करके ठीक है उसी जार में जिस जार में आपको सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम मिली है ठीक है और उसको मिक्स करके आप लोगों ने जो है स्टोर कर लेना है उसमें डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले जब आप सारे कामों से फ्री हो जाए और आपको लगे कि अब आपने सोना है तो तब आप लोगों ने अपने फेस को वॉश करना है सुपर वाइट राइस कोलेजन फेस वॉश से ठीक है इससे फेस को वॉश करके अच्छे तरीके से क्लेंस करके आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम को लगाना है रात को सोने से पहले, ठीक है, और लगाने के बाद बेफिक्र होकर सो जाना है. पहले ही 3 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे और ये वो रिजल्ट्स होंगे जो कि सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम से आपको मिलेंगे, ठीक है जी. तो ये इसका रिजल्ट होगा और 3 दिन में वाजे फर्क आप लोग देख लेंगे, आपको नजर आ जाएगा, मिल जाएगा. इसके अलावा जिन लोगों के फेस के ऊपर एक्नी का इश्यू रहता है, एक्नी रहती है, तो आप इसमें एक्नी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. जहां आपने सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम में सीरम को ऐड किया, सीरम के साथ आप सुपर वाइट राइज एक्नी क्रीम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका मुकम्मल एक फॉर्मूला जिसमें आपकी एक्नी भी खत्म हो जाएगी, आपका डाउन कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाएगा, आपकी जुड़ियां चाइयां सब कुछ खत्म हो जाएंगी, आपकी स्किन टोन जो है इवन टोन में आ जाएगी. और यही वो खूबसूरती है जो कि आप कई अरसे से चाह रहे हैं कि आप

0: साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे लाइव कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जो कि आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ आते हैं जी. तो हमें चुनिंग किया है जी गोट मोहम्मद तैयब थेबो से, हबीबुल्ला थेबो ने, और प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आप भी लगाएं सुपर वाइट की कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप चाहते हो कि ये मैं लगाना चाहता हूँ, और वो लगाएं, क्योंकि वही करना चाहिए जो इंसान का दिल चाहे या इंसान का दिल करे, और फिर उस चीज में जो है ना आप मुतमईन होते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं. रशीद खोसो ने हमें कमेंट किया है. अब्दुल रजाक कुंबर हमें सुन रहे हैं. नजीर खोसो के साथ साथ हमें कौन सुन रहे हैं जी, कामरान अली सुन रहे हैं. नजीर खोसो लिखते हैं कि कभी कभी सुकून चीजें हासिल करने में नहीं, उनसे दिल हटा लेने में होता है. जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे अमानत समझो, मिल्कियत नहीं. दिल जब मेरा दिल जब
1: प्यार है, हाँ, ये प्यार है.
0: ओके जी, आपको कमेंट गायब हो चुका है, समझने के चक्कर में कमेंट ऊपर चला गया है जी. कोई बात नहीं, हाँ, जब मेरे सामने आता है तो मैं उसे दोबारा रीड करती हूँ. कामरान अली वंस अगेन हमारे साथ मौजूद है जी, और जुल्फिकार बोजदार हमें सुन रहे हैं. अर्शद मरी कहते हैं सलाम, कैसी हो जी, बहुत अच्छी हूँ. मोहम्मद सिद्दीक लुंड हमें सुन रहे हैं गोट वलीदात खान लुंड से, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा अर्शद मरी हमें सुन रहे हैं, वेरी नाइस शो आपका, थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी फ्राइडे का दिन है और बहुत सारी पोइट्रीज आप लोग सेंड कर रहे हैं, वेरी बैड. कुछ सुपर वाइट के बारे में भी बात कर रहे हैं. इसके अलावा रुखसार, यू आर जस्ट ब्यूटीफुल, यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड ब्यूटीफुल वॉइस. ओके, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया, थैंक यू. और इसके अलावा जी कॉल्स आप लोगों की लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कलाम प्ले करते हैं जी. मेरे ख्याल से हम नात प्ले करते हैं, हाँ, नात प्ले करते हैं, और नात के साथ फिर हम आगे चलते हैं. एंड हियर कम्स, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं.

0: आगे जी कॉल्स आप लोगों के लेना स्टार्ट करते हैं 03000113488 के ऊपर. फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हम चेक करेंगे कौन और कहां से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. जी हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सागर भाई बात कर रहे हैं.
1: जी मैम, सागर.
0: सागर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. नात सुनाएंगे हमें कोई अच्छी सी
1: नात
0: या कोई कलाम सुनाएंगे? क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो हम गाने की जगह हमदिया कलाम या सूफी कलाम या कोई नात आपसे सुनेंगे.
1: नात मैं सुनाऊंगा रफी साहब की.
0: ठीक हो गया जी, सुना दें.
1: मोहब्बत की मेरे मदद ताजा मदीना हम आ

0: मदद दीदा रे मदीना।
1: ओके जी, और कुछ कहेंगे?
0: नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस आप
1: नाथ हम आपकी प्ले करेंगे और उससे पहले हम चलेंगे आगे जी। और आगे कैसे जाएंगे हम, आप लोगों के बहुत सारी कॉल्स लेंगे 03000113488। अच्छा, कॉल से रिलेटेड ये है कि कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं, एंड वो जो रूल्स हैं ना, वो कुछ इस तरह हैं कि जो लोग डेली बेसिस पर कॉल कर रहे हैं, लाइक जिन लोगों ने कल कॉल की तो वो आज कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, और जिन लोगों ने आज कॉल की वो फिर कल कॉल नहीं करेंगे। तो अगर डेली बेसिस पे सेम वही दो चार कॉलर्स आएंगे तो हम नए लोगों को मौका नहीं दे पाएंगे। तो अगर ये रूल होगा तो अच्छा होगा, मतलब कि डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड, तो ये होगा। और इसके साथ साथ जी, उन लोगों को हम मौका देंगे जिन लोगों की जो कॉल है ना वो कभी कभार लगती है या वो लगाते हैं, तो उन लोगों की लगनी चाहिए, ठीक है।

अगी जी, साथ साथ आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं जी. कैसे? वो ऐसे बना सकते हैं कि सुपर वाइट के ही प्रोडक्ट्स को आप लोग लेंगे. ठीक है, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को लेने के बाद अब उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा सा एक मुकम्मल पैकेज जिससे आपकी मुकम्मल खूबसूरती जो है इनहेंस हो जाए. लाइक अगर आपके फेस के ऊपर अगर पिम्पल्स हैं तो पिम्पल्स खत्म होने के साथ साथ जो है आपके जान कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब लोगों की जो खूबसूरत लगने की पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि रंग चिट्टा गोरा होना चाहिए. तो कॉम्प्लेक्शन का बहुत खास ख्याल रखते हैं आजकल सब लोग कि कॉम्प्लेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए. कुछ भी हो जाए बस कॉम्प्लेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए. तो कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा और साथ में अगर एक्नी है तो एक्नी खत्म होगी, या अगर आप जस्ट पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन भी खत्म होगी, या फिर अगर आप लोगों को कोई और इशू है, स्किन टोन अच्छी नहीं है आपकी, बेरौनक सी स्किन है, बेजान सी स्किन है, कोई रौनक नहीं है चेहरे पे और स्किन की वजह से आपके चेहरे के ऊपर 12 बजे रहते हैं, तो 12 के आप लोगों ने थोड़े कम बजाने हैं, 12 से थोड़े कम बजाएंगे. ठीक है, और चेहरे को खूबसूरत बनाएंगे. अच्छा, फार्मूला कैसे तैयार करेंगे आप लोग? सबसे पहले आप लोग जो है सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम लेंगे. ठीक है, सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम के साथ साथ आप लोग सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम लेंगे और उसके साथ लेंगे सुपर वाइट ऑयल फ्री सीरम. ठीक है, सुपर वाइट ऑयल फ्री बूस्टर सीरम ये आ जाता है जी, और इन तीनों को आपस में आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से मिक्स. एक आप लोगों ने जार लेना है. मेक श्योर कि आपका जो जार है वो स्टील का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपका जो जार है या तो वो एक अच्छी सी प्लास्टिक का होना चाहिए, या अगर ग्लास का जो बाउल है वो हो तो ज्यादा बेस्ट है. ठीक है जी, तो उसमें आप लोगों ने ये सारी चीजें ऐड करनी है. ऐड करने के बाद उसी में आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको जार में स्टोर कर लेना है. ठीक है, जार में स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद इसको रख लेंगे, और रख के आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ रख के छोड़ नहीं देना है, इसको यूज करना है. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करने के लिए बनाया है. और यूज कैसे करना है, रात को सोने से पहले आप लोग फेस को वॉश करेंगे सुपर वाइट के फेस वॉश से, जो कि ऑयल फ्री फेस वॉश है. इसमें एवोकाडो की बहुत सारी खूबियां हैं. ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है. ठीक है, तो ऑयल को कंट्रोल करेगा. जब ऑयल कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्नी जो है कम होते होते खत्म हो जाएगी एक दिन, और ये कमाल होगा सुपर वाइट के प्रोडक्ट से जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं. अच्छा, फेस को वॉश करने के बाद आप लोगों ने इस क्रीम को, इस फॉर्मूले को जो कि आपने तैयार किया है, रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है. और अगर आप चाहें तो इसको हाथ और पांव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा, और पहले ही 3 दिन में आपको वाजे फर्क मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसमें क्रीम के साथ साथ इसका बूस्टर भी ऐड किया है. तो ये बहुत कमाल का फॉर्मूला आप लोगों के लिए तैयार है जी, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं. लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले इसको मार्केट जाके बाय करना है जी. हर अच्छे मेडिकल और जनरल स्टोर पे आपको ये इजीली अवेलेबल मिलेगी, वहां से आप लोग ले सकते हैं. और लेने के बाद आप जब देखेंगे तो उसकी क्वालिटीज का मेयार आपको बता देगा कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे. तो इसी बात पे हम प्ले करेंगे एक और कलाम, और कलाम के साथ हम जाएंगे कहाँ, न्यूज ब्रेक एंड फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. तो दोनों के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा.

मामला चिल डियारी करार फौरी तौर रोकण जो मुतालबो कडे खाते चयो आहे त हरमन शरीफन जी तकदस इबादत गुजारन ऐं पांधीअड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे गैर ज़िमेवारनि कदमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे हरमन शरीफन जे तहफ़ुज़ पंहिंजे अवाम जी हिफ़ाज़त पांधीअड़नि जी हिफ़ाज़त लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां खुलो खुले में मिलाए बीठल आहे ख़ते में

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब रेलवे वाले वजीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुलाकात। हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म के रेलवे के मामलों तरक्याती मनसूबों से ब्रीफिंग डी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाफिर की सहूलत हिफाजत के यकीनी बनाने इसरा कदम खड़ने की हिदायत कई वही। शहबाज शरीफ चुना है पटरी के वक्सर मरम्मत सार संभाल यकीनी बनाने लाय अमली कदम खाया वन। रेलवे की आमदनी में वादला फ्रेट सर्विस के फाल कर जरूरत है। रेलवे जो निजाम बेहतर बनाया वन। वे वजीर पारा सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल अप्रैल 2027 तक फाल कर हिदायत। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सरथे एजुकेशन खाते जो इजलास। मुराद अली शाह पारा शागिर्द की दाखिला बढ़ाने भरपूर मुहम हलान की हिदायत। वे वजीर अपग्रेड थियल स्कूल में उस्ताद शागिर्द तालीमी सहूलतों पे डी मौजूद हुजन। रुगो स्कूल तामीर कर मकसद ना है बार दाखिला मयारी तालीम के यकीनी बनाना है। मुल्की तरक्की लाए सभी के एक एजेंडा अचणो पव। पॉलिसी में तसलसल बिना तरक्की मुमकिन ना है। लाहौर में तकरीब के वजीर आला मरियम नवाज चाह है दहशतगर्दन के पीके जो हुसन तबाह कर छो है। पाक फौज दहशतगर्दी जो भरपूर मुकाबलो कर रही है। जवान ए ऑफिसर शहीद थी रहा है। वे वजीर जो कम रुगो हुकुम हलान ना हों। पंजाब में डोहन से 70% जब्तो आंदो है। कच्चे में भी अमुन बहाल किया है।

0: कालम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात।

0: भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003835569।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

Kijo, welcome back once again. I'm sun rahe hain Zindagi Gulzar hai, sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. Aur Aksa Cosmetics jo ki aap logo ke liye banate hain itne khoobsurat bana dene wale products ki pehle kabhi aap logo ne itne khoobsurat bana dene wale products kabhi use nahi kiye honge. To ab use kar le aur apni skin ko khoobsurat banaye, apni acne ko khatam kare, apni pimples ko khatam kare, apne dark circles ko khatam kare, kyunki khoobsurat lagna har insaan ka pura pura haq hota hai. To khoobsurat lage aur apni skin ko khoobsurat banaye, apni skin ka bahut khaas khayal rakhe, acche acche products use kare, jaise ki super white aur super white ki vitamin c cream jo ki sardiyon mein bahut zyada effective rahegi aap logo ki skin ke liye, kyunki ek to ye anti aging hai, theek hai, aur dusra ye aapki skin ko brighten up karti hai, aur teesra agar aapki skin ki open pores ho gaye hain, like aapki skin ke open pores isliye ho jate hain jab kabhi aapki skin ke upar acne nikal aati hai, aur kabhi na kabhi matlab har insaan ki ek aisi umar aati hai jahan pe usko acne, bahut shadid wali acne face karni padti hai, theek hai. To aapki acne us acne ki wajah se aapki skin ke open ho jate hain pores, aur unhi pores ko minimize karna bahut mushkil ho jata hai, aur wo pores jo hai open rahe ke bahut zyada matlab ke scars ban jate hain bade bade. To un scars ko khatam karne ke liye ya apne open pores ko minimize karne ke liye, jin logo ke abhi abhi pores open hue hain pimples nikalne ki wajah se, to wo unko yahin pe minimize kar le, aur vitamin c cream istemal kare ji super white walon ki, theek hai, ye pores ko minimize karegi aur scars ko bhi khatam karegi, aapke dark spots ko khatam karegi, iske ilawa aapki jo aging spots hai na unko bhi रिड्यूस करेगी, आपकी स्किन टोन को इवन टोन में लेकर आएगी जी, आपकी फेयरनेस को इंक्रीज करेगी. तो एक ही क्रीम में सात सात फायदे हैं, देखिए मैंने गिन भी लिए हैं, यानी कि 7-in-1 ब्यूटी, वाओ. तो इसमें एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है जी, नेचुरल लेमन के और नीम एक्सट्रैक्ट्स मौजूद है जो कि इसके रिजल्ट्स को मजीद और इनहेंस करते हैं. अच्छा, इसके रिजल्ट्स को अगर आप डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं तो वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम के साथ वाइटामिन सी फेस वॉश को भी यूज करें. वाइटामिन सी फेस वॉश को यूज करेंगे ना तो आपको डबल से ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे. और जब भी फेस को वॉश करें, दिन में करें, रात में करें, जब भी करें, जहां भी करें, इसी फेस वॉश से करें. और फेस वॉश को तो आप इजीली बैग में भी कैरी कर सकते हैं, जितने भी खवातीन हैं या फिर मर्द हजरात हैं दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं जी. दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और आपको डबल से ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे. इसमें भी आप लोग बूस्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मजीद और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले तो बूस्टर को ऐड कर लें इसमें भी, नो इश्यू, आपकी स्किन को मजीद और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इससे. तो सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, नाम याद कर लें, सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, ठीक है, और सुपर वाइट का वाइटामिन सी फेस वॉश. तो ये 7-in-1 ब्यूटी है और यही वजह है कि सुपर वाइट आपकी स्किन को दे रही है खूबसूरती वाला खूबसूरत सा ग्लो और बहुत खूबसूरत सी खूबसूरती. अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. सैमसंग कॉलर्स आर नॉट अलाउड, पहले से बता रही हूँ, कॉल ड्रॉप करूंगी तो फिर ना कहिएगा कि हमें बुरा लग गया, ठीक है. तो बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई जरूरत है. आप लोगों ने जस्ट इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपने एक दिन कॉल की है तो अगले दो दिन तक आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है. एक दिन कॉल करके दो दिन रेस्ट करें फिर कॉल करें, दो दिन आप आराम से तसल्ली से प्रोग्राम सुने, नई कॉलर्स को सुने, मजा आएगा. अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिंपली SKR टाइप करें अपने मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में जाके और फिर अपना मैसेज टाइप करें, सेंड करें 8881 पे. और कमेंट कर रहे हैं आप लोग, हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग इस वक्त एग्जैक्टली लाइव है हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, दैट इज GFM 88 एंड GLarkana FM 88.8, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो स्ट्रीमिंग मिल जाती है एंड साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. स्मार्ट किशोर ने हमें कमेंट किया, स्मार्ट हाजिर है वापस जाने के लिए. लगता है मैडम छुट्टी नहीं दे रही आजकल आपको, कोई रेस्ट या ब्रेक वगैरह भी नहीं दे रही आपको, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है. अच्छा, इसके अलावा अब्दुल जी कैसर हमें सुन रहे हैं,
تھینک یو سو مچ. اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے, بڑا لمبا سا کامنٹ کیا ہے شی. اور اس کے علاوہ کامران علی نے بہت سارے کامنٹ کیے ہوئے ہیں, اور کامنٹ کی طرف بھی چلیں گے.

साथ साथ हम एक कलाम भी प्ले करते हैं जी. कलाम के साथ फिर कमेंट्स को इंक्लूड करते हैं. सो कलाम मेरे पास मौजूद है बहुत खूबसूरत शाह मर्दान अली. सुनते हैं और आगे चलते हैं.

And आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एंड सुपर वाइट के खूबसूरत हसीन बना देने वाले प्रोडक्ट जिसमें मौजूद है जी सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली भी, और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि बिल्कुल सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली भी आती है। अब सर्दियों का चूंकि मौसम आ रहा है और सर्दियों के इस मौसम में हर मतलब के बंदे की नीड होती है कि पेट्रोलियम जेली उसके पास होनी चाहिए, खास तौर पर लड़कियां। लड़कियों का गुजारा पेट्रोलियम जेली के बगैर बिल्कुल भी नहीं होता, लड़कियां और बच्चे, ठीक है जी। तो ये जो पेट्रोलियम जेली है आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर मिल जाती है, रोज में, कॉफी में, चॉकलेट में एंड और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसके। तो ये पेट्रोलियम जेली जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं जी, लेमन में भी आता है, लेमन का फ्लेवर भी आता है इसमें, और क्या कमाल की फ्रेग्रेंस होती है। और जब आप इसको लगाते हैं तो यकीन करें फ्रेग्रेंस इतनी कमाल की होती है कि अगले बंदे तक भी जाती है, यानी कि लगा के आप जहां जाते हैं वहां तक फ्रेग्रेंस जाती है इसकी। और फ्रेग्रेंस के साथ साथ ये बहुत कमाल की चीज है, मतलब पेट्रोलियम जेली हो और सर्दियां आने वाली हो और आप लोग बाय ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो इन सर्दियों में आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली का अगर इस्तेमाल करना है तो वो पेट्रोलियम जेली होगी सुपर वाइट वालों की, ठीक है। इसका जो एक जार है वो आपको अच्छी क्वांटिटी में एक तो मिल जाता है, दूसरा आप पेट्रोलियम जेली से बहुत सारी चीजें खुद भी बना सकते हैं, लाइक टिंट्स बना सकते हैं, लिपस्टिक्स बना सकते हैं एंड आप इसको लिप्स पे भी लगा सकते हैं, हैंड्स पे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के नेल्स भी ड्राई हो जाते हैं, नेल्स, हाथ, पांव बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसको अपनी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो इस काम भी आती है, दूसरा नेल्स के ऊपर लगा सकते हैं अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा सर्दियों में ड्राई रहते हैं मेरी तरह, तो नेल्स के ऊपर आप लोग इजीली इसको लगा सकते हैं, रात को भी लगा के सोएं, दिन भर लगाते रहें, ठीक है। इसको आप अपने साथ कैरी करें बैग में, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल में हैं तो ट्रैवल में भी आप इसको साथ रख सकते हैं। तो ये एक बहुत कमाल की चीज है जी, बहुत मजे की चीज है। और इसके अलावा जी सुपर वाइट के वैसे सारे ही प्रोडक्ट बहुत मजे के और कमाल के हैं, तो ये पेट्रोलियम जेली भी आप लोगों ने यूज करनी। और ये बातें करते करते मेरा जो मेरी जो नजर है ना वो गई है जी टाइम के ऊपर, तो हमें लेना पड़ेगा एक अदद कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अरे न खुश्क और बेरोनक की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेहमे आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबी जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836 अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, sponsored by Super White, by Aksa Cosmetics और Super White के products जो कि बहुत खूबसूरत बना रहे हैं आपको. लास्ट लिंक में हम वापस आ चुके हैं जी, और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल्स कर सकते हैं जी. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, और इसके अलावा 8881 पे आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर. और इसके अलावा जी, सुपर वाइट के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल रहा है इस खूबसूरत से सफर में, और ये खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम जली, ठीक है, पेट्रोलियम जली इनकी आती है जी कोकाओ बटर के फ्लेवर में, रोज के फ्लेवर में आती है जी, और रोज के साथ साथ लेमन के जो है फ्लेवर में आती है. आप इसको यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम तमाम उन लोगों के लिए, तमाम अनमर्द हजरात और खवातीन के लिए जो कि ऑयली स्किन वाले हैं, और ऑयली स्किन है उनकी, तो इसमें मौजूद है जी एवोकाडो की बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को ऑयल मजीद उस पे आने से रोक देते हैं, और जब ऑयल आपकी स्किन का कम हो जाएगा इसके इस्तेमाल से तो डेफिनेटली आपकी जो पिंपल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पिंपल्स और एक्ने का इश्यू उन्हीं लोगों को होता है जिनकी स्किन टाइप ऑयली होती है. ऑयली है तो सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम यूज करें, प्लस उसके साथ सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश भी जरूर यूज करें, ठीक है, और यूज करने के बाद पहले ही 3 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको हेल्दी स्किन मिलेगी, और साथ में आप इसके सुपर वाइट का बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो बूस्टर ऐड करेंगे सुपर वाइट वालों का सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में, ठीक है, और अगर आप चाहें तो मजीद इसको क्या कर सकते हैं, मजीद इसको और इनहेंस कर सकते हैं सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम से. सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम जो कि आपको मिल जाती है, और सारे ही प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं इजीली मार्केट से, और सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम जो कि आप सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसका बूस्टर ऐड करेंगे, ठीक है, बूस्टर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, ठीक है, बूस्टर या सिरम आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, एक अच्छा सा एक्नी गो फॉर्मूला तैयार है आप लोगों के लिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट की हेयर रिमूवल क्रीम भी आती है जी, साथ साथ इसके बारे में भी मैं आपको बताती जाऊं. सुपर वाइट की हेयर रिमूवल क्रीम जो कि आपकी स्किन को सेफली क्लींस करती है और आपके हेयर्स को रिमूव करती है, ठीक है जी, आप अपने इसको हाथों पे यूज कर सकते हैं जी, हाथों के जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे. लेग्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां जहां आपके अनवांटेड हेयर हैं आप वहां पे स्किन पे लगा के अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं जी इजीली, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि हेयर्स को रिमूव करेगी. और इसके साथ साथ बन जाते हैं ये तमाम खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जो कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो लेके आए ग्लो, लेके आए खूबसूरती, लेके आए इन तमाम खूबसूरत प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने कमाल के और खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, साथ साथ सुपर वाइट का राइस ग्लो फेस वॉश जिसमें कोजिक एसिड कॉलेजन मौजूद है, ये सारी चीजें इतनी कमाल की चीजें, इतने कमाल के इंग्रेडिएंट्स में मौजूद हैं कि आपकी स्किन को हेल्दी बना देंगे, आपको कोई और चीज यूज करने की जरूरत नहीं है. ये प्रोडक्ट्स वो वाहिद प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन को मोर हेल्दियर बनाएंगे, ठीक है जी, तो सुपर वाइट राइस फेस वॉश जिसमें कोलेजन भी मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो फेस वॉश आप लोग ये वाला यूज करें, और यूज करने के बाद आपको मिलेगा वो ग्लो जो कि पहले कभी किसी और फेस वॉश से नहीं मिला होगा. तो अगर एक अच्छे फेस वॉश की तलाश में है तो ये वाला यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे
फेस वॉशेस की रेंज है जी सुपर वाइट वालों की, जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन सी फेस वॉश भी इनका आता है, खास तौर पे वो तमाम तर लोग जिनकी स्किन पे ब्लेमिशेस लाइक बहुत सारी पिगमेंटेशन और छाइयां हो जाती हैं और उसकी वजह से उनकी जो स्किन टोन है वो इवन नहीं रहती है और उनकी स्किन पे छाइयां होने की वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन कहीं से डार्क, कहीं से बहुत ज्यादा वाइट या कहीं से बहुत ज्यादा डार्क, तो इस तरह की सिचुएशन कुछ फेस के ऊपर बन जाती है और अगर फेस के ऊपर ही ऐसी चीजें होंगी तो बंदे का सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. ठीक है, तो अपनी स्किन का बहुत सारा खास ख्याल रखते हुए आप लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है और इंतखाब करना है आप लोगों ने सुपर वाइट विटामिन सी का. अगर खास तौर पे आप लोगों की स्किन के ऊपर छाइयां मौजूद है तो विटामिन सी की ब्यूटी क्रीम आप लोग यूज कर सकते हैं. सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम और साथ में इसका फेस वॉश पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. तो आज ही मार्केट जाके बाय करें. ठीक है, आपको हर जगह से ये प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं. साथ साथ हम कमेंट्स की तरफ भी आते हैं जी. कमेंट्स के साथ साथ मैसेजेस की तरफ भी आएंगे और कमेंट हमें कर दिया है जी नजर मोहम्मद भट्टी ने. नजर मोहम्मद भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे रुखसार, आपका नाम बहुत अच्छा है, नाइस प्रोग्राम फ्रॉम मचियारी. थैंक यू सो मच नजर मोहम्मद भट्टी. और रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा

0: सनाउला जरवार हमें सुन रहे हैं, सनाउला जरवार थैंक यू सो मच. और फैसल अहमद दानी हमें सुन रहे हैं, कामरान अली के बहुत सारे कमेंट आए हैं, साथ साथ हम कॉल्स भी लेंगे. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मैं भी वाली बात कर रहा
0: हूँ. ओके, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे बताइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम है ये?
1: ये जिंदगी गुलजार है, बिल्कुल हम पहली सुनते हैं.
0: ओके, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय
1: सुपर राइट.
0: वेरी गुड, यानी कि बहुत शौक और बहुत गौर से सुन रहे हैं, इससे पता चलता है.
1: जी बिल्कुल, नंबर नहीं लग रहा था, आज लगा है इतने सालों में.
0: बिल्कुल जी, नंबर नहीं लगता और यही तो वाहिद मसला है कि नंबर नहीं लगता. और मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि सेम सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड. तो फाइनली आज आपकी कॉल लग गई है. मुझे बताएं कि सुपर वाइट का कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे आप?
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम वो छाइया है मेरे को. इंशाल्लाह ताला ये आपका गौर से मैं प्रोग्राम सुन रहा था. जी जी इंशाल्लाह.
0: चलिए जी, जरूर यूज कीजिएगा और यूज करने के बाद जरूर बताइएगा कि कैसे रिजल्ट्स मिले हैं आपको. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मोलाई का गाना सुनाएं.
0: मोलाई का गाना हम कल सुनाएंगे क्योंकि आज जुम्मा है. ठीक है?
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: चलो ठीक है.
0: आपको हम कलाम सुनवाते हैं. अच्छा सा
1: कसीदा सुनाएं कोई.
0: चलिए कसीदा सुनाते हैं आपको. थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें. ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू. और 03000113488 नेक्स्ट कॉलर लेंगे जी. टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स ले लूं. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से?
2: बाजी रुखसार मोहम्मद आलम बात कर रहा हूं, फ्रॉम कंदरा से.
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी.
0: ओके, वेलकम टू द शो. मुझे बताएं कौन सा शो है ये?
2: जिंदगी गुलजार है बाजी.
0: जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय
2: वो पता नहीं होगी,
0: पता नहीं है. चले पता ये भी चल जाएगा. मुझे बताएं, मैं जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो यूज करेंगे?
2: इंशाल्लाह यूज करेंगे.
0: कौन से हैं वो? नाम तो आपको पता नहीं है.
2: नाम तो भूल गया हूँ.
0: सुपर वाइट के प्रोडक्ट हैं.
2: कौन से?
0: हाँ, सुपर वाइट, वेरी गुड. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने यूज करना है. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा यूज करना है.
2: जी जी बिल्कुल.
0: ठीक हो गया जी. कुछ और जी? जी
2: सुन रहे हैं, सबको सलाम बाजी, आपको टीम को सलाम.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज जी. और ये कुछ कलर्स और साथ साथ हम चलते हैं आगे. और एक खूबसूरत सा कसीदा हम प्ले करते हैं जी. और इसी के साथ हम भी आगे चलते हैं.

ब्यूटीफुल गुलाम. और साथ साथ हम चलते हैं जी मैसेजेस की तरफ. अदीब बहन रुखसार, वाइट सुपर ब्यूटी क्रीम, वाइट सुपर नहीं सुपर वाइट, ठीक है आगे पीछे कर ले सही हो जाएगा. सुपर वाइट क्रीम अच्छी है, बेहतर चल रहा है प्रोग्राम. रुखसार बाजी, सच्चे हीरे को सच्चे हीरा सच्चा हीरा ही पहचान सकता है. अच्छा ठीक है. और ये मैसेज हमें किया है सागर नियाज हुसैन चांडियो ने, थैंक यू सो मच आपका. और इसके अलावा जी कुछ कमेंट्स आप लोगों की जो कि मुझे रिसीव हो रहे हैं. नजर मोहम्मद बट्टी कहते हैं कि सिस्टर आज आतिफ असलम का सॉन्ग, सॉन्ग नहीं चलाएंगे हम, आतिफ असलम की हम नात प्ले कर देंगे लास्ट में. और थैंक यू सो मच. और इसी के साथ मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए क्योंकि टाइम और वक्त दोनों का मुकाबला बहुत सख्त हो रहा है. तो इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम को पहुंच रहा है.

हम लेंगे इजाजत इंशाल्लाह, मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको बताए हैं आपकी स्किन की और आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा मौजूद, इनको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है, तो जरूर यूज करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. दिस इज मी RG Ruksaar signs out. Take care. Goodbye. Amani khuda. Allah Hafiz.

0: यकीनी बणाइण लाइ अमली कदम खया वञनि। रेलवे जी आमदनी में वाद वेलफेयर सर्विस खे वधीक बहाल करणु ज़रूरी आहे। रेलवे जो निज़ाम बहितर बणायो वञे। वरे वज़ीर पारां सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल 2 अप्रैल 2027 ताईं फाल करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास। सैद मुराद अली शाह पारां शागिर्दनि जी दाख़िला वधाइण लाइ भरपूर मुहिम हलाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो आहे त अपग्रेड थियल स्कूलनि में उस्ताद शागिर्द ऐं तालीमी सहूलियतूं पहिरें ई ॾींहं मौजूद हुयूं। रुगो स्कूल तामीर करणु मक़सद नाहे, ॿारनि जी दाख़िला ऐं मयारी तालीम खे यकीनी बणाइण आहे।
1: बाकी सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आपको कहे मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया, वो कहेगा जहाज। आपको कहे मैंने 2 लाख घरों घर बनाए, वो कहेगा जहाज। आप कहें कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई है, वो कहेगा जहाज। और हमारे उसमें कहते हैं कि लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं। तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा आप ये ना सोचना कि लोग जहाज को भूल जाएंगे। लोग कभी जहाज को भूलेंगे नहीं, क्योंकि मरियम नवाज के 5 साल में उनके पास सवाई जहाज के और कोई बात नहीं करनी।
0: पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज बार बार जहाज जो जिक्र करण ते मीडिया सां नाराज़। लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे मरियम नवाज चयो, तव्हां चओ मूं 2 करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो, मीडिया चवंदी जहाज। अवां चवंदा त 2 लख घर ठाहिया, मीडिया चवंदी जहाज। अवां चओ 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया, मीडिया चवंदी जहाज। मूं उज़मा खे चयो अवां जहाज खे विसारे छॾियो, माण्हू कॾहिं बि जहाज न विसारींदा। उन्हनि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझु बि न मिलंदो। केके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 7 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। हिंदक वारे इलाइक़े में गुजी इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारिजनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितना ख़्वारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दी मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहे। सकरण में जसकम नारी तहरीक पारां सिंध इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज जी रैली। जीएम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकितल रैली में वॾे अंग में औरतूं शरीक। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध धरती 1000 साल खां क़ाइम आहे, विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। लाड़काणे में छठी जी तकरीब में हवाई फायरिंग, गोली लॻण सबबि नौजवान मारिजी विया, 2 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ कादिर बख़्श भुट्टो में हवाई फायरिंग दौरान गोली लॻण सबबि राहिल चनो मारिजी वियो, 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया। पुलिस वाके वारी हंधि पहुची नौजवान जो मरण ज़ख़्मियुनि खे खणाए इस्पताल पहुचायो। सजावल में गर्ल्स हाई स्कूल जे क्लास रूम जी छित जा चापुड़ किरण लॻा ऐं 3 शागिर्दियाणियूं ज़ख़्मी। मैट्रिक जी क्लास रूम जी छित जा चापड़ किरण सबबि शागिर्दियाणी निदा सोणी ऐं सलीमा ज़ख़्मी थियूं। ज़ख़्मी शागिर्दियाणियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। शहरनि पारां स्कूल जी मरम्मत कराइण जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: मेहराब पुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराब पुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپر نالو آہی اعتماد جو
1: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل برات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
1: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
0: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: ॿाई कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अरे न खुश्क ऐं बेरोनक जी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान

हुकूमत ऐं पीटीआई विच में ॻाल्हियूं जारी। स्पीकर आया सादिक जी सदारत हेठि थींदड़ ॻाल्हियुनि में ॿिन्ही धुरियुनि जा नुमाइंदा शरीक। हुकूमती वफ़द में घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, राणा सनाउल्ला, अमीर मक़ाम, तारिफ़ फज़ल चौधरी, तलाल चौधरी, श्री रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज़ ज़खरानी शामिल आहिनि। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गुहर राजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद केसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल आहिनि। पीटीआई जे ऐलानियल लंगमार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। इस्पताल ई हूंदी आहे। बानीअ जो चेकअप थी वियो, डॉक्टर्स खेस फिट करार ॾिनो आहे। वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनाउल्ला जो बयान। वफ़ाकी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो त केपीके हुकूमत खे इंतिशार वारो सिलसिलो ख़तम करणो पवंदो। हुकूमत जी 27 ते बि तयारी हुई, 4 अक्टूबर बाबति बि तयारी मुकमिल आहे। पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। हमला चिल ॾियारींदड़ करार, फौरी तौर रोकण जो मुतालबो। परडे खाते चयो आहे त हुरमिन शरीफ़नि जी तक़दुस इबादत गुज़ारनि ऐं पांधीड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे। गैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे। हुरमिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़, पंहिंजी अवाम जी हिफ़ाज़त, पांधीड़नि जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। ख़िते में जटादार अमुन जी क़याम लाइ कुबी कोशिशूं जारी रहंदियूं। अरब मुल्कनि पारां मदीने में मस्जिद नबवी खे बिजली फराहम कंदड़ गिर्द ते हौसियुनि

0: ॾींह मौजूद हुजनि। रुगो स्कूल तामीर करण मकसद न आहे, ॿारनि जी दाख़िला ऐं मयारी तालीम खे यकीनी बणाइण आहे।
1: बाकी सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आपको कि मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया वो कहेगा जहाज, आपको कि मैंने 2 लाख घर कर्ज लाए वो कहेगा जहाज, आप कहें कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई वो कहेगा जहाज। और हमारे उसमें कहते हैं कि लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं, तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा आप ये ना सोचना कि लोग जहाज को भूल जाएंगे, लोग कभी जहाज को भूलेंगे नहीं, क्योंकि मरियम नवाज के 5 साल में उनके पास सवाई जहाज के और कोई बात नहीं है।
0: पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज बार बार जहाज जो जिक्र करण ते मीडिया सां नाराज। लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे मरियम नवाज चयो आहे, तव्हां चओ मूं 2 करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो, मीडिया चवंदी जहाज, अवां चवंदा त 2 लख घर ठाहिया आहिनि, मीडिया चवंदी जहाज, अवां चओ 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया, मीडिया चवंदी जहाज। मूं उज़मा खे चयो अवां जहाज खे विसारे छॾियो, माण्हू कॾहिं बि जहाज खे न विसारींदा, हुननि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझु न मिलंदो। केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 7 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। हिंदक वारे इलाइक़े में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारिजनि खे जहनम बेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितना ख़्वारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहे। पीडीएफ जे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत ॾिनी। हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल ॻाल्हि ज़रिए ई निकिरी सघे थो। जमायत इस्लामी केपीके में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

یار یتیم تھی ویندو آ پریشان پریئے لائے حاکمت

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाँ इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾु गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस سم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

पीटीआई विच में गालिन जो पेरो दौर खत्म थो जारी स्पीकर आया सादिक जी ज़ारत हेठ थींदड़ गालिन में बिन्ही धुरन जा नुमाइंदा शरीक हुकूमती वफ में घरू वजीर मोहसिन नकवी राणा सनाउला अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी तलाल चौधरी श्री रहमान नवीद कमर ए एजाज जखरानी शामिल पीटीआई वफ में बैरिस्टर गोहर राजा नासिर अब्बास सलमान अक्रम राजा असद केसर आमिर डोगर ए हलीम आदिल शेख शामिल हुआ। पीटीआई के ऐलान लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ मामलों से गाल इस्पताल ही होंगी है पानी जो चेकअप थी वो डॉक्टर्स के फिट करार दिनों है। वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउला है तो पीटीआई हाँ लॉन्ग मार्च जो सर वापस वटे वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है तो केपी के हुकूमत के इंतिशार वारो सिलसिलो खत्म करो पव हुकूमत के सतावी से भी तैयारी हुई। 4 अक्टूबर बाबत भी तैयारी मुकम्मिल है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है तो लॉन्ग मार्च ए गाल गडोगड हलंद पाकिस्तान पारा मदीने में बिजली घर के निशानो बनाने के सख्त लफ्ज में मजम्मत हमला चिर डारींदड़ करार फौरी तौर रोकने जो मुतालबो परे खाते है तो हुरमिन शरीफन के तकदस इबादत गुजारन पांदीड़न की सलामती जो हर हाल में एहतराम किया वे गैर जिम्मेवार कदमन के फौरी तौर खत्म किया वे हुरमिन शरीफन के तहफुज पैंजी अवाम की हिफाजत पांदीड़न के तहफुज लाए पाकिस्तान सऊदी अरब से गुलो गुले में मिलाए बीठल है खिते में जटादार अमुन के क्याम लाए भी कोशिशों जारी रहा।

0: अरब मुल्कन पारा मदीने में मस्जिद नबी के बिजली फराम कंदड़ गेट ते हुसैन के हमले की मजम्मत हमला मुसलमान लाइंदड़ करार हुसैन गेट ते हमले की तरदीद कदे है तो सऊदी हुकूमत जहा इल्जाम बेबुनियाद आन सऊदी हुकुमरान कूड़ा इल्जाम बदरा यमन के जारी जारियत बंद कर अमेरिका पारा ईरान के बहरी नाकाबंदी सख्त करने जो फैसलो 2000 में टे जंगी बरदार बहरी बेड़ा मुकर्र करने जो फैसलो अमेरिकी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के

0: तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापडा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
0: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایم فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپر نالو آہی اعتماد جو
1: ارے نا خشک ایم بیرونو کی سکن ہر انہی جلائے چھا
2: डैमेज ए डल स्किन के कयो
1: आउट पर यू किए तो के खपे
2: सुपर वाइट ड्राई कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उनसंगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जें जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harni Joshu. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: और सुबह ने मंजंद नी वगे थींदो स्पीकर आयाज सादिक जी सारत हेठि थियल ॻाल्हियुनि में पीटीआई पंहिंजो मौक़िफ़ खां हुकूमती टीम खे आगाह कयो आहे. हुकूमती टीम पीटीआई खां ऐलान लांग मार्च मुलतवी करण जो मुतालबो बि कयो. ॿिन्ही धुरियुनि ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो. ॻाल्हियुनि में हुकूमत तर्फ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, राणा सनाउला, अमीर मकाम तारिक फज़ुल चौधरी, तलाल चौधरी, श्री रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज़ ज़खरानी शरीक थिया. पीटीआई वफ़द में भरसल गुहर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद केसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हो. इस्पताल ई हूंदी आहे. बानीअ जो चेकअप थी वियो, डॉक्टर्स खेसि फिट करार ॾिनो आहे. वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे लांग मार्च वापसि वठे. वफ़ाकी वज़ीर तारिक फज़ुल चौधरी चयो आहे त केपीके हुकूमत खे इंतिशार वारो सिलसिलो ख़तम करणो पवंदो. हुकूमत जी 27 ते बि तयारी हुई, 4 अक्टूबर बाबति बि तयारी मुकमिल आहे. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गुहर चयो आहे त ॻाल्हियुनि खे गॾोगॾु हलंदियूं. पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत हमला चिर ॾियारींदड़ करार. फौरी तौर रोकण जो मुतालबो परॾेह खाते चयो आहे त उर्मिन शरीफ़नि जी तक़दुस इबादत गुज़ारनि ऐं पांधेड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे. गैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे. उर्मिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़, पंहिंजे अवाम जी हिफ़ाज़त, पांधेड़नि जी हिफ़ाज़त लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे. खिते में जटादार अमुन जे क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं. अरब मुल्कनि पारां मदीने में मस्जिद नबवीअ खे बिजली फराहम कंदड़ गिर्द ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत. हमला मुस्लमाननि लाइ चिर ॾियारींदड़ करार. हुसैन गिर्द ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि. सऊदी हुकमरान कूड़ा इल्ज़ाम बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि. अमेरिका पारां ईरान जे बहिरी नाकाबंदी वधीक सख़्त करण जो फ़ैसिलो. 2003 जंगी बरदार बहिरी बेड़ा मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो. अमेरिकी उहिदेदार मूजिब USS रोज़वेल्ट ऐं USS मैकनराल्ड विच ओभर में मुक़ररु कया पिया वञनि, जंहिं बाद विच ओभर में अमेरिका जी ताक़त वधीक मुस्तहकम थींदी. वॾे वज़ीर पारां सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल 2 अप्रैल 2027 ताईं फाल करण जी हिदायत. वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास. सैद मुराद अली शाह पारां शागिर्दनि जी दाख़िला वधाइण लाइ भरपूर मुहिम हलाइण जी हिदायत. वॾे वज़ीर चयो आहे त अपग्रेड थियल स्कूलनि में उस्ताद, शागिर्द ऐं तालीमी सहूलियतूं पहिरें ई ॾींहं मौजूदु हुजनि. रुगो स्कूल तामीर करणु मक़सदु न आहे, ॿारनि जी दाख़िला ऐं मयारी तालीम खे यकीनी बणाइण आहे.
5: सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आपको तो मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया, वो कहेगा दिखाज. आपको तो मैंने 2 लाख घर दर्ज लाए, वो कहेगा दिखाज. आप कहीं कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई, वो कहेगा दिखाज. और हमारे उसमें कहते हैं कि वो कुछ देर बाद भूल जाते. तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा

0: केपी के।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल 1.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
8: न अदा?
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
11: 0301-399-2836।

0: डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराब पर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: असांजे जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-21-96-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: 3-5-9-2-1-2-0। जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे उनजी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: रोशनी का तेरापुर, प्रोफेसर एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
3: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी, राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514456 आई तौकीर अहमद 03616237।
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी।

अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और बहुत बहुत खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, जहां आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि दिल तक भी उतरती है। मैं हूं आपका अपना मेजबान अशफाक नियाज़ी और आज के अगले दो घंटे हम गुजारेंगे हंसी खुशी, मौसीकी, मालूमात और जिंदगी की उन खूबसूरत बातों के साथ जो शायद हम रोजमर्रा की मसरूफियात और मसरूफ जिंदगी में भूल जाते हैं। अरे यारा, जिंदगी बहुत बहुत बड़ी अजीब चीज है। कभी एक छोटी सी खुशी पूरा दिन खूबसूरत बना देती है और कभी एक छोटी सी परेशानी, हमें लगता है दोस्तों कि सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, मसला जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी खुद मसला कभी नहीं होती। कामयाब इंसान वो नहीं दोस्तों जिसकी जिंदगी में कभी मुश्किल ना आई हो, कामयाब इंसान तो वो होता है यारा जो मुश्किल के बावजूद चलता रहे, कभी आहिस्ता कभी तेज लेकिन रुके नहीं। तो आज का ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों के नाम जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं खूबसूरत म्यूजिक ट्रैक के साथ। अरे जनाब, आप क्या कहते हैं कि मैं एकदम से म्यूजिक ट्रैक सुना दूं? अरे जनाब, अपने दिमागों को हाजिर नाजर रखिए। मैंने आपको अभी तक ना अपना नंबर बताया है, ना अपना SMS करने का तरीका बताया है, ना अपनी टाइमिंग बताई है। तो जनाब, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, यानी कि जो अभी अभी हमारे चैनल को ट्यून कर चुके हैं, तो हम उनको बताते चलें कि हमारा नंबर है 03000113488। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन को जल्दी से उठाइए, टाइप कीजिए SKR स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए 8881 पर। उसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी, GFM88 नेटवर्क के फेसबुक पेज पर भी हमें हमारे प्रोग्राम के फ्लायर के नीचे मैसेजेस कर सकते हैं, जो कि हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। खैर जनाब, कामयाबी के बारे में हम समझते हैं कि कामयाबी का मतलब बहुत ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बहुत बड़ी शोहरत होती है। ऐसा नहीं है ना। असल में हमारे आजकल जो जेन ज़ी हैं और जितने भी लोग हैं जो कि शॉर्टकट के तरीके अपनाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि कामयाबी बस बहुत ज्यादा पैसा है, गाड़ी है, बड़ा घर है और बहुत सारी सहूलियात हैं या शोहरत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत में कामयाबी दोस्तों, कामयाबी की तारीफ हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। किसी के लिए कामयाबी अपने बच्चों की अच्छी तालीम देना है, किसी के लिए अपने वालदेन को खुश रखना है, किसी के लिए एक छोटा सा कारोबार शुरू करना है और किसी के लिए, जी हाँ, किसी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो अपने कल से आज बेहतर इंसान बन जाए। इसीलिए दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला बिल्कुल मत कीजिए। हर इंसान की अपनी रफ्तार है, कोई 25 साल में कामयाब होता है, कोई 35 साल में और कोई 45 में भी और कोई इसके बाद भी। बिल्कुल जनाब, जब किस्मत में लिखा होता है इंसान तभी कामयाब होता है। देर से मिलने वाली कामयाबी भी कामयाबी ही होती है, ये याद रखिए। बस दोस्तों, शर्त सिर्फ इतनी सी होती है कि इंसान कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़े। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी मंजिल देखेंगे लेकिन आपकी मेहनत का सफर सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। इसीलिए अपनी मेहनत को कम मत समझें, बल्कि आज अगर आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़े हैं तो भी आप कल से आगे होते हैं। और यही जाना हमारी तरक्की का राज होता है, आगे बढ़ने का राज होता है। सो गाइज, लव यू ऑल। शो में अशफाक आपके साथ है 5 से 7 बजे तक। सारे रिसोर्सेज, सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए जिनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ शो में शामिल हो सकते हैं। तो क्यों ना जनाब, शो का पहला गाना आपकी समातों की नजर करते चले। शो का पहला गाना हम आपकी समातों की नजर कर रहे हैं, तब तक आप प्रेजेंट माइंड हो जाइए। ये यकीन कर लीजिए कि मैं आपके साथ हो चुका हूं 2 घंटे तक। हम आपके लिए प्ले करते हैं जिसने बहारा रिमिक्स गाना है, बहुत फेवरेट है, यकीनी तौर पर आपकी शाम को बहुत प्यारा सा बना देगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ गपशप लगाते हुए मेरे शो को एंजॉय कीजिए। वापस आना बिल्कुल मत भूलिएगा GFM 88 नेटवर्क पर।

0: राधे से ना, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। और अगर आप भी कहीं खो गए हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज वापस आ जाइए और जनाब बाहर निकलिए उन यादों से जो कि आपको घेर चुकी हैं इस गाने के बाद। खैर एनीवे, अशफाक मेरा नाम है, आपका शो है आई लव यू ऑल। और जिंदगी में सिर्फ काम काम काम काम काम काम ही नहीं होता जनाब, कुछ आराम भी होता है। कभी कभी हंसना भी चाहिए, कभी दोस्तों के साथ बैठना भी चाहिए, कभी पुरानी तस्वीरें देखकर मुस्कुराना भी चाहिए और कभी कभी पसंदीदा गाने सुनने चाहिए। और पसंदीदा गाने सुनने के लिए आप ट्यून कीजिए GFM88 नेटवर्क अशफाक नियाज़ी के साथ आई लव यू ऑल शो। और जनाब कभी कभी बगैर किसी वजह के चाय का कप हाथ में लेकर खिड़की से बाहर देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं, जिंदगी रास्ते का नाम भी है। हम दोस्तों अक्सर कहते हैं ना कि जब पैसे ज्यादा होंगे तभी खुश होंगे, जब अपना घर होगा तब खुश होंगे, जब कामयाबी मिलेगी तब खुश होंगे। लेकिन मसला दोस्तों पता है क्या है, जब कभी खत्म नहीं होता, जब जब जब जब जब जब बढ़ता ही जाता है। और जनाब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए आज की खुशी को कल के इंतजार में जाया ना करें। जो कुछ आज आपके पास है उसकी कदर करें, अपने लोगों की कदर करें, अपनी सेहत की कदर करें, अपने वक्त की कदर करें और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी की कदर करें। और सबसे बढ़कर हमें लगता है कि हमें अपनी कॉलर्स की कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि कॉलर्स बड़ी बेचैनी से हमारे शो का वेट कर रहे हैं, तो हम उनको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। 03000113488 हमारा नंबर है। सबसे पहले कॉलर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं, काला प्यारा मानो
0: साईं, मुझे प्यारा प्यारा दोस्त के राहे किथा पे गला है वो मीठा मानो
1: बस साईं प्यारो सा जो अमीर भक्त मंगना रसलो गोठ की मिश्री गोठ मा साईं।
0: वाओ मिश्री गोठ मा मिश्री मिश्री जेडो असा जो अमीर भक्त भाई असा सबनी संग रहे, केड़ा हाल चाल है, दा ठीक ठाक आयो, मजे में आयो?
1: अल्लाह जा सा ने दो खैर खुशा साईं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अदा अमीर भक्त यो बुधायो तो जेका मा शुरू में प्रोग्राम में गालियो कंदा आयो इन जो तहा छा समझदा आयो त मानु ते असर थिंदो आ कोन थिंदो आ?
1: असर थींदो आहे अला साईं, माण्हू खे हिदायत ॾे, माण्हू पटड़ी खां ठिड़ी पवंदा आहिनि।
0: पटड़ी खां त ठिड़ी पवंदा आहिनि, वाकई ठिड़ी पवंदा आहिनि।
1: हा माण्हू सत्यनाई जो वक़्तु रहे कोन, माण्हू भलाई पए त उहो गले में पए थी,
0: गले में पए थी। पर असां हिते जेको इन स्टेज ते वेही करे, इन स्टूडियो में वेही करे जेका पंहिंजे दोस्तनि खे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं ज़िंदगी जे हवाले सां, त अलाह साईं करे त उन्हनि जी जेका आहे दिमाग़ में इहा ॻाल्हियूं पवन ऐं उहा पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने गुज़ारनि न, जीअं असांजो इहे कोशिश हूंदी आहे।
1: बिल्कुलु साईं, हा
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां
1: ॿुधायो होशियार थींदो,
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। असांजो फर्ज़ आहे चवणु ॿुधाइणु ऐं सिधो रस्तो ॾेखारणु, पर हाणे सभिनी जी पंहिंजी पंहिंजी मर्ज़ी हूंदी आहे, कीअं ईअं न? जी जी जी हुकुम हुकुम।
1: जंहिं महिल जुमे जो ॾींहुं थींदो आहे, 5 बजे जो टाइम थींदो आहे, नमाज़ पढ़ी तव्हांजे प्रोग्राम जो ॾाढो इंतज़ार कंदो आहे।
0: रियली थैंक यू सो मच अमीर बख़्श मंगणार भाउ, तव्हांजी कुर्ब आहे, तव्हांजो प्यार आहे, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि।
1: दोस्त शामिल कहिड़ा ने?
0: बिल्कुलु बिल्कुलु। गानो त ॿुधायो न, कहिड़ो गानो ॿुधाओ?
1: बस शमन जो ॿुधायो।
0: कहिड़ो?
1: बस तुंहिंजी पसंदि आहे ॿुधाए छॾ।
0: ओके ओके ओके ओके, शमन अली मिराली जो मां ॿुधायां।
1: दोस्त शामिल कहिड़ा ने?
0: जी जी जी जी जी।
1: प्यार दोस्त अलाह दाद मार, मोहम्मद दली मार, पोपट पिता थी, मोर पिता थी, अली गोर खान मार,
0: जी जी,
1: अब्दुला भंगवार
0: जी,
1: हिदायत अला कलाबी
0: जी।
1: ओके
0: माय स्वीट हार्ट ब्रो, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमीर बख्श मंगनहार और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तुम केर कितना प्यार गलायो?
1: जी सर मैं
0: केर गलायो था
1: अब्दुल्ला
0: भंगवार साहब, केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, मजे में आयो? थैंक यू इलाही अरसे का पोए आया तो अब्दुल्ला भंगवार साहब काथे रह जी आओ? अच्छा गुड गुड वेरी गुड, तव्हांखे प्रोग्राम भलो लॻंदो आहे, तमामु घणी सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा अब्दुल्ला भाई इहो ॿुधायो त मां हाणे शमन जो गानो थो प्ले कयां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
1: हा शमन गानो इहो ॿुधायो
0: जंहिंखे जीअरे यार छॾे विया, ईअं न? कंहिंजे नाले करणु चाहियो? जी जी
2: हाँ शाम को तो काम नहीं है, जाने परमार इरशाद परमार
0: जी जी
2: हेल वक्त के साथ मुझे प्यार हो गया धनी मुझे तीन आदि बैठा मुझे तो अधिशा शक्तिरा
0: ओके
2: ये कहने वक्त सुन नहीं मुझे डालने में किसान ने केला इशार सुना
0: ओके सब नहीं कहता ना सलाम पहुंचा अदा भंगवार साहब अब्दुल्ला साहब थैंक यू सो मच हमारे साथ अब्दुल्ला भंगवार साहब और अब लेते हैं जनाब शो की एक और कॉल हमारे कॉलर बड़े देर से जो है ना वो हमारा वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी कॉल अटेंड करें अस्सलाम वालेकुम हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब केरे सा सबनी सा गदो हेलो केरे सा सबनी सा गदा
3: हेलो
0: हेलो जी जी केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम आवाज अचे थे सा
0: हां हां अचे थी सफा हल्की हल्की थी अचे तमा बुधायो केर पे गलायो आई थिंक रफीक जतो ये सा सबनी सा गदन
3: रफीक मन जतो ये गलायो
0: वाह वाह वाह रफीक जतो ये सा ने तमाम घणा पुराना कॉलर आ हिन जदी खा वठी एफएम में जात थियो आ तदी खा वठी यो सा के कॉल करे तो आई तमाम घणो लॉयल कॉलर आ है कदी भी मिस कोन तो थे की है रफीक अदा किलो खीर में घणा पानी मिलाईंदा आयो अच्छा पानी में खीर मिलाईंदा आयो जबरदस्त जबरदस्त दिल से दुआओं भी मानो अच्छा गुड्डा जबरदस्त शहर चौक से खीर कदी वी इनशाला रफीक यो बुधायो तो अज जो शमन जो गानो मां प्ले में से केड़ी हेलो जी ईद आए तो ना पर ईदी तो सही ना दा अदा अगर तुम दिसो तो हर डी ईद जो है अगर तुम सुठे तरीके से मल्हायो
3: हलो वो सही आ पर मुके यार मौलाई जो गानो बताओ
0: केड़ो
3: केड़ी से आ देखा अंदर अंदर दिखाए
0: ए मरिया से तो के सिक लगे दिखाई हो या कहंदी
3: सिक एड़ी से आ देखा
0: हाय हाय
3: अंदर अंदर सिगारे
0: मत रो पगले आशिक रफीक साहब यो बुधायो तो यो गानो कह जे नाल थकण चाहियो
3: बस सिक्के तो बदन ता जन संतान ता जो असा आवाज तकरा जो तो सबन के रफीक की जतो ही तरफ आइला है सारा प्यार मोहब्बत सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू रफीक भाई थैंक यू
3: सवाल है करदा
0: जी जी थैंक यू रफीक साहब तभी खास ख्याल रखे ओके हमारे साथ है जनाब रफीक भाई और रफीक भाई के बाद हम जनाब कोई कॉल नहीं लेंगे क्योंकि गाने का टाइम शाम हुआ जाता है और अब हम प्ले कर रहे हैं एक जबरदस्त गाना शमन अली निराली की वॉइस में इसके बाद ये ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ साथ हैं

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सचल की सर मस्त धरती.
3: फातिये मेहरान.

0: रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम निहंदे जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 to 5 PM ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-851।
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह। हबीब अल्लाह भाई मुख्तियार सीधी हलाया तो कैं जे नाले था करण चाहयो
1: सही पौंदी आसो मेरो कलाम बजावा त बेहतरीन हो।
0: हलो ठीक है इंशाल्लाह मां पूरी पूरी कोशिश किया तो तमा यो बतायो यो गानो कैं जे
1: मेरो कलाम यो सही हो अच जल्द मुडे जानी वाला मखे
0: अच जल्द मुडे मखे रात बिन निंद न आई
1: इंशाल्लाह।
0: हां मां बिल्कुल प्ले तो क्या है थोड़ी देर में कैं जे नाले करना चाहयो
1: मैं मजा भाई रानी
0: जी
1: जमीला में सोलंकी अब्दुल गनी सोलंकी
0: जी जी
1: सोलंकी गुलाम हैदर सोलंकी जेके जेके धंधा उन्होंने ना
0: थैंक यू सो मच। सीजन अब हम प्ले कर चुके हैं मुख्तियार सीधी सुनिए और एंजॉय कीजिए और फिर वापस आना बिल्कुल मत।

0: जाएं और जनाब आगे की सोचें और कुछ अच्छा सोचें कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और फिर चेंज लाएं, वरना हम ओवर थिंकिंग ना करें, एक बात के 10 जवाब खुद से ना बनाएं, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह ताला पे छोड़ दें और मेरे साथ रहें क्योंकि मैं आपके साथ हूं। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं, के हाल
0: चाल साईं? कुर्ब तां जा प्यार भरा, सलाम तां जा सा तई पहुंचा प्यार भरो, वालेकुम सलाम तवां भी कबूल कजो असा जो।
1: वालेकुम सलाम इस्ताक के आदि साहब, के हाल चाल अमीर सखायो?
0: हां बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तवां भारिन जे दुआऊं, तवां केर किथां पे गलायो
1: साईं? मां वकार जे तो लड़काणे को तां जो दीवानो सरदार।
0: वकार भाई केड़ा हाल चाल है? ठीक ठाक है, लड़काणा वारा सब केड़े हालत में आइन?
1: लड़काने वारा सब मौज मस्तन में हैं। तां बुधायो सरदार, तां जी प्रोग्राम हुंदो आ, लड़काने वारा खुशीन में झुमोदा सरदार।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुजा प्यारा भा, तां जा कुर्बान, तां जो प्यार आ, तां जी मोहब्बत आ, यही प्यार मोहब्बत असा मोटाणी देण जी भी कोशिश कयूं था, लाए असा कामयाब थियूं था, लाए कोन था थियूं
1: सरदार? तां कामयाब आयो तदे असा पारा तां जा मुरीद आयो
0: सर। सर सर पेरन ते अतबा, थैंक यू सो मच, दिलन में जायूं तां जी। आई यो बुधायो वकार भा, त केड़ो गानो बुधन चायो था अजो? हेलो वकार भी कहाँ गए? हेलो वकार भाई, छो खामोश थी यार। वकार भाई लाइन पे तो हैं पर इनकी आवाज नहीं आ रही है। खैर जनाब वकार भी हमारे साथ हैं, लड़काना से उनकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। पर वकार भा तमाम घड़ी सुठियूं गालियों पे करे लगे तो असांजी नजर लगी भैया, या वरी कहें जालिम जी असांजी असांजे वकार भा की नजर लगी भैया, कॉल की नजर लगी भैया। वकार भाई आयो तो है पर हाँ आवाज गुम अस। वकार भाई हेलो, ओह जनाब कॉल ड्रॉप थी भैया, पर कोई गाल ना है, वठो शो जी भी कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब, केर असा सबनी सा गड़
2: सर? मां सागर को बुला रहा
0: हूं। सागर भाई आपने हमारे वकार भाई की कॉल काट दी। मैं मजाक कर रहा था, आप सुनाए कैसे सागर भाई? ठीक है,
2: करम करम वाले।
0: और सुनाए काम काज कैसा जा रहा है? जुम्मे की छुट्टी है तो आज आप मुझे कौन सा गाना सुनाने वाले हैं?
2: आज बस गजल है, सुने आप जो है गजल सुना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, दो मिसरे मुझे सुना दे, एक दो मिसरे।
2: किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो, किस तरह जीते हैं के लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो,
0: दर्द
2: के नाम से वाकिफ न जाओ कोई, दर्द के नाम से वाकिफ न जाओ कोई, उन गली को सोचा डर हमको का दो यार, हमको भेजन का अंदाज का दो यार, किस तरह दो
0: यार। किसके नाम करना चाहते हैं अभी गाना? देखिए मैंने आपका गाना लगा दिया है,
2: आपके नाम कर दिया मैंने।
0: हाय थैंक यू सागर भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
2: थैंक यू।
0: हमारे साथ बहुत सुरीले से सागर भाई, और सागर भाई को हम वही गाना सुनाएंगे जो कि वो गा रहे थे, तो सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: थे जनाब, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समाधों की नजर किया। और सागर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप लेते हैं जनाब, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है, शो की कॉल लेते हैं और आपको अपना नंबर बताते चलें जनाब। हमारा नंबर है 03000113488। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल शो भी हो सकते हैं। नजीर धारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा समर धारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमें बड़े गौर के साथ सुन रहे हैं। इसके अलावा जनाब हम जाते हैं अपने मैसेजेस की जानिब। मैसेज में हमें इनामुद्दीन जमाली बलोच ने हमें मैसेज किया है जनाब, कहते हैं अशफाक आपका शो बहुत अच्छा है, हम बड़े गौर के साथ सुनते हैं और बड़े शौक के साथ सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जनाब, आप हमारे शो को बड़े गौर के साथ और बड़े शौक के साथ सुनते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी जनाब कि आप हमें इतने गौर से सुनते हैं और बड़ा मजा आता है आपको हमारे शो को सुनने में। तो जनाब अब हम लेते हैं शो की एक और कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो जी जनाब, लगता है इनको आवाज हमारी नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं है, कभी कभी कॉल में डिस्टर्बेंस हो जाती है और हम चाहते हैं कि ये कॉल की डिस्टर्बेंस सिर्फ कॉल तक रहे, आप तक ना है। अगर आपकी कॉल नहीं लगती तो आप डिसार्ट मत हो, आप स्माइल कीजिए और दोबारा से नंबर मिलाइए। तो जनाब आपके जैसे आपके भाई के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग जनाब कॉल मिला रहे होते हैं, तो कभी कभी नंबर भी बिजी होता है और कभी कभी नंबर नहीं भी लगता है, तो ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है जनाब, हम अगले हफ्ते आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। और आप ट्राई कीजिए, आपका नंबर जरूर लगेगा इंशाल्लाह ताला और आप हमारे साथ जरूर इस शो में शिरकत करेंगे और हमारे साथ इस शो में आप एंजॉय भी करेंगे। तो जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, लेकिन कॉल लेने से पहले आपको नंबर मैं जरूर बताते चलूं, 03000113488 हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनाब अब फाइनली हम देते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो ओए होए, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मुझे प्यारा भाई, जी जी जी केर असा सबनी संगत भाऊ,
1: गरीब नवाज चावरी साईं, गरीब नवाज चावरी,
0: गरीब नवाज चावरी साहब कितना कॉल किया था असा के,
1: अरे सकर शहर को सर
0: माशाल्लाह। गरीब नवाज भाई केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, कम कार किए तो लेता जो कचहरी थी भैया तांके तां सा गड मुजी मुखे भी तमाम घणो भलो लगयो आए। गरीब नवाज भा मां मुमताज मलाई, मां मुमताज मलाई प्ले कयो आए, कें जे नाले ते करण चाहियो?
1: अरे मुझे वटे मोटे जो आज प्यार तेरी जो आज प्यार चक्कर को गोली मार को चौक चली टांगरी,
0: जी जी जी जी
1: आए मुझे फरजन का जो आज इकरार निकाल लिया, जिनकार निकाल लिया, जो वटे मोटे जो आज ताज टीम के तमाम के भाई,
0: थैंक यू सो मच गरीब नवाज टांगरी साहब। भाई शौकत टांगरी का सने सलाम दीजो, हुआ सा तमाम घणो पुरानो कॉलर है पर अल्लाह ही काते गुम थी गया,
1: तरला चाटे गुम थी आया ताज के जदा से चौदा देने के लाइन पे आने भाई
0: अल्लाह ही लाइन ताने इस पर आने ऐसा दुआ कर सकूं ता
1: थैंक यू चाओ इंशाल्लाह लाइन
0: पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच गरीब नवाज भाई, थैंक यू जी। जनाब रफीक जतोई की फरमाइश पर हम प्ले करेंगे बहुत प्यारा सा गाना सिक एड़ी शया, इस गाने को सुनिए, हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे शो GFM 88 नेटवर्क पर, आपका अपना शो है आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: क़ौमी मसलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढण ते ज़ोर, ॿिन्ही धुरनि जूं ॻाल्हियूं जारी रखण ऐं सुभाणे ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन विच में मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजी मौक़िफ़ खां आगाह कयो। स्पीकर अयाज़ सादिक ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तरफ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, राणा सनाउल्ला, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक। पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी शेरी रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज़ जखराणी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गोहर राजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: ये पहला मरतबा है कि हमारी और हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है जिसमें हम सारे लोग मौजूद है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है, कल इंशाल्लाह ताला
2: हमारा गवर्नमेंट से भी कोई नुमाइंदगान शामिल होंगे,
1: यही कमेटी होगी, यही हमारी कमेटी है। खान साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते
3: रहे। असल ये है कि ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कल फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है।
0: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर सुभाणे मंझंदि 2 वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त उमेद आहे त सूरतहाल बहितरी तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोज़िशन लीडर चयो त असां पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾे, ॿीहर ॻाल्हियूं सुभाणे थींदियूं। पीपल्स पार्टी पीटीआई खां हिकु भेरो ॿीहर लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर ख़तम करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदड़ पीपल्स पार्टी टीम में शामिल सेनेटर शेरी रहमान चयो त लॉन्ग मार्च जी तारीख़ वधाइण या मुलतवी करण सां मसइलो हल न थींदो। पीटीआई लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर ख़तम करे, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राब आहे, कॾहिं बि हिकु फर्द लाइ लॉन्ग मार्च नाहे थींदो, कोशिश हूंदी त सुभाणे ॻाल्हियूं कंहिं नतीजे ते पहुचनि।

अस्पताल अस्पताल ही होंदी आहे बानी जो चेकअप थी वयो डॉक्टर्स के फिट करा दिनो आहे वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त पीटीआई हाणे लॉन्ग मार्च जो सॾु वापसि वठे वफाकी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी जो चवणु हो त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत खे इंतिशार वारो सिलसिलो ख़तम करणो पवंदो हुकूमत जी 27 ते बि तयारी हुई 4 अक्टूबर बाबति बि तयारी मुकमल आहे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त लॉन्ग मार्च ऐं ॻाल्हियूं गॾु गॾु हलंदियूं।

0: पाकिस्तान पारां मदीने में बिजली घरनि खे निशानो बणाइण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत, हमला चिड़ ॾियारींदड़ करार, फौरी तौर रोकण जो बि मुतालबो। परॾेही खाते चयो आहे त हरमैन शरीफ़नि जे तक़दस इबादत गाहुनि ऐं पांधेड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे, ग़ैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे। हरमैन शरीफ़नि जी तहफ़ुज़, पंहिंजे अवाम जी हिफ़ाज़त, पांधेड़नि जी तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब सां कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे। खिते में जटादार अमन जी क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं। अरब मुल्कनि पारां मदीने में नबवी सलाहु वसलम खे बिजली फराहम कंदड़ ग्रिड ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत, हमला मुसलमाननि लाइ चिड़ ॾियारींदड़ करार, हुसैन ग्रिड ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी हुकूमत जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। सऊदी हुकुमरान कूड़ा इल्ज़ाम मरण बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर।

0: नौकरी लाइ बीएड डिग्री लाजमी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282727 4 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वगे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो
1: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल जो वारंटी क्लेम सेंटर सेडा मोटरसाइकिल जी बहितरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-00003

ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: इस्तेमालु न करे ऐं जेको आहे सो वधीक रूबरू ॾेखारनि त उहो बहितरु रहंदो। ठीकु आहे
1: जी सर, हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसंदा की अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, असांखे कुलर जो सूर आहे, इहो असां तव्हांजी ख़बरूं ॿुधी असां
1: जी जी
2: महिरबानी सां तव्हां तकरीर जो कयो आहे, फोन कयो आहे, असांखे इहो मर्ज़ु आहे कुलर जो।
1: सही सही, केरु ऐं किथां पिया ॻाल्हायो?
2: असां साईं हे कोटी शहर मां साईं।
1: अच्छा ठीकु आहे, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो ॿुधो। जी सर,
0: हिकु त अदे जी महिरबानी, असांजो नालो ॿुधी ऐं अदे ॻाल्हि कई आहे, ऐं महिरबानी उन्हनि सभिनी दोस्तनि जी, पेशंट्स जी, मुंहिंजनि जी, जेके असां ते हिकिड़ो अछो जो यकीन अलाह जी ज़ात ते, लेकिन उन्हनि जी महिरबानी आहे ऐं हू जेको आहे सो उन यकीन जे मुहावे असां वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां हुननि खे शिफ़ा मिलंदी आहे। हाणे बि कुझु दोस्त आया पेशंट, त साईं असां तव्हांजो नालो ॿुधी आया, असीं नालो इन हवाले सां जो कंहिं दोस्त खे तकलीफ़ हुई उनखे फ़ाइदो पियो इन ई मर्ज़ में तव्हां ॾे आया, ऐं अॼु वरी असां तव्हांजो नालो ॿुधियासीं। उन्हनि जी छोजो उन्हनि जी महिरबानी बजा हूंदी आहे। अचूं था अदे जे मर्ज़ जे तरफ़, त कुन रग जो सूरु आहे, त ॾिसो कुन रग जो सूरु यानी हिकिड़ी नर्व वेन हूंदी आहे जेकी ब्लॉक थी वेंदी आहे, रत जी सर्कुलेशन उनमें ख़तमु थी वेंदी आहे, रग दॿजी वेंदी आहे। उनजी ट्रीटमेंट असां काफ़ी दफ़ा उन ते प्रोग्राम बि कया आहिनि पंहिंजे प्रोग्राम जे तवसुत सां, ऐं इन्हनि असांजे ॿुधंदड़नि ताईं इहो पैगाम ॾिसो इहो ई फ़ाइदो हूंदो आहे हिन प्रोग्राम सां, प्रोग्राम जे हिकिड़ी अवेयरनेस आहे इहो प्रोग्राम ज़ाहिरी आहे, त असां मूंखे ॾाढी इंतिहाई ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मां हीउ प्रोग्राम करणु ईंदो आहियां, छो जो अलाह ताला तमामु नंढनि नंढनि ॻाल्हियुनि खां बि ख़ुशि थींदो आहे, त हीअ हिकिड़ी क़िस्म जी अवेयरनेस आहे, असां जेतिरो थी सघे थो असां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं हिकु पैगाम पहुचाईंदा आहियूं, त माना जेकॾहिं लख माण्हू ॿुधनि था, जेकॾहिं कंहिं ॾहनि माण्हुनि बि उन ते अमल कयो, असांजे लाइ हीउ तमामु हिकिड़ो सवाबु वारो कमु आहे, ऐं कोशिशि इहो ई हूंदी आहे, ऐं इहो ई असां जेको आहे सो मिशन आहे, ऐं इहो ई मिशन जारी रहंदो। ऐं अधे खे बि ॿुधाईंदासीं, ॾिसो उन ॻाल्हि कई त कुन रग जो सूरु आहे, त इन में घणा दोस्त छा कंदा आहिनि जो वञी ॾंभ ॾियारींदा आहिनि, ऐं जेको आहे सो रतु कटाईंदा आहिनि, टुका ॾियारींदा आहिनि, इहो इंतिहाई इंतिहाई इंतिहाई ग़लति आहे। इन सां छा थींदो आहे, माण्हू जी रग डेमेज थी वेंदी आहे, माण्हू हलण खां ई रहिजी वेंदा आहिनि, के लंगड़ा ई हमेशह लाइ वरी लंगड़ा ई हलंदा आहिनि। सो मां उन्हनि खे बहितर ॾसु इहो ॾींदुसि, जेकॾहिं उहे असां ताईं नथा अचनि, असां ते उन्हनि जो इतमाद न आहे, त महिरबानी करे कंहिं मुस्तनद डॉक्टर ॾे वञनि, ईअं कंहिं मां ग़लति लफ़्ज़ न चवंदुसि, लेकिन अहिड़े के ॿिए शख़्स ॾे, अहिड़े के ॿिए हंधि न वञनि जिते इहे हरबा इस्तेमालु थियनि था, जिते टुका लॻनि था, जिते ॾंभ अचनि था, जिते रत निकिरनि था, त माण्हू जी जंहिंजी जान ख़तरे में पइजी सघे थी। सो असां वटि त इन शइ जो कामयाबु इलाजु आहे, अलाह ताला जी महिरबानी सां उन जा व्यूज़ बि मौजूदु हूंदा आहिनि, उहे पेशंट्स बि ईंदा आहिनि, ऐं इन जो ट्रीटमेंट जेको आहे सो होम्योपैथिक दवा जे रस्ते मुमकिन आहे, बहितरु आहे। सो अधो परे कोन वेठो आहे असां वटि, त माण्हू जेको आहे सो लाड़काणे खां बि इन मर्ज़ में आयल आहिनि, माशाला घुटकी खां बि ईंदा आहिनि, बलोचिस्तान खां बि ईंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खे फ़र्क़ु पवंदो आहे। सो अधे खे चवंदुसि त बहितर इहो ई आहे त सुबुह जे पहिरें पहर में रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितरु रहंदो। छा तव्हांजो ख़्यालु आहे असल भाई?
1: जी सर, बिल्कुलु सही पिया चओ तव्हां, वधीक बिल्कुलु क़रीब आहे कोटड़ी कबीर सर, अचे रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितरु थींदो।
0: जी साईं,
1: जी सर, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मोहम्मद साहिबु। हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट ब्रेक कमर्शल जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो ZFM 94 मेहरापुर।
3: लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावरन जो तमा फाइन लाइन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए ब्यूटी सीरम जहे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अव सभी बुद्धन के खुश आमदीद चूं था। प्रोग्राम आए सेहत की गाल असें स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मैमूर साहब। मुख्तलिफ बीमार माहिर डॉक्टर जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो पुराणो नज़लो नच्छू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहण कन अचण

मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, औरतन ए मर्दन जे पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। आयो असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851, 0301-9196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब जो कॉन्टेक्ट नंबर आहे 0301-9196-851। इन ते कॉल करे कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहब खां का बि इंफॉर्मेशन वठी सघो था।

0: डॉक्टर साहब हिन महिल तव्हां ॾिसो था जीअं मौसम चेंज थी थिए त हिन महिल हिकु बिना ॿिए माण्हू खे ज़ुकाम नज़लो गलो ख़राबु थिए थो त इन जा सर कहिड़ियूं अहिड़ियूं आहिनि एहतियाती तदाबीरूं जंहिंजे असां करे असां जेको हिन सर बचाव करे सघूं था पंहिंजनि बीमारियुनि मां।
1: जी साईं बिल्कुलु तमामु बहितरीन जेको आहे सो ॻाल्हि आहे ऐं इहो अहिड़े क़िस्म जी अवेयरनेस पहिरियां बि ॾींदा आहियूं हाणे बि ॾियूं था पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं त हिकु त मौसम तब्दील थियण सां जेको आहे सो खोड़ सारियूं वरी नयूं नयूं बीमारियूं बि जेको आहे सो पैदा थींदियूं आहिनि। हिकु त आम बीमारी मिसाल हींअर मच्छर जो वरी आमद आहे ऐं मलेरिया यानी मच्छर यानी मलेरिया सो मलेरिया जो जेको आहे सो थियणु यानी पाण खे ख़बर अथव त केतिरो पेशंट तकलीफ़ुनि में अची वेंदा आहिनि। इन खां बहितर इहो आहे त अहिड़ा माण्हू पाण जा एहतियाती तदाबीर करे जंहिंसां मच्छ मलेरिया न थिए त बहितर आहे। हिकु त कमरे में जेको आहे सो यानी अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो था जेके असां बत्ती मिलंदी आहे जेकी उहा ॿारे माण्हू इस्तेमालु करे सघे थो उन सां जेको आहे सो इहे मच्छर वग़ैरह या नेट जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे या आम सिंधी तेल असांजो जेको हूंदो आहे न ख़ुशबूदार तेल हूंदो आहे ऐं कुदरती तेल आहे सरिहं जो तेल उहो हणी सुम्हण सां बि तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव त तव्हांजे वेझो मच्छर हरूभरु न ईंदो। माण्हू घणा मॉस्किटो लोशन हणंदा आहिनि उहो स्किन जे लाइ तमामु हानिकार आहे नुक़सानकार आहे या जेके जलेबियूं ॿारींदा आहिनि उहे नुक़सानकार हूंदियूं आहिनि ऐं उहो साह जे नालियुनि में वञी करे जेको आहे तव्हांखे एलर्जी पैदा करे सघंदो या की जेके एलर्जी जा पेशंट हूंदा आहिनि उन्हनि जे इस्तेमाल सां उहा एलर्जी उन्हनि जी वधी वेंदी आहे। इन जे करे या जेके निम जा पन पता हूंदा आहिनि उहे साड़ण सां बि तव्हांजे घर में जे वेझो जेकॾहिं साड़ींदो त उन सां बि मच्छर तव्हांजे वेझो जेको आहे सो न ईंदो आहे। इहो हिकिड़े क़िस्म जो मच्छर खां बचाव जो जेको आहे सो तरीक़ो ॿुधायो तव्हांखे। जी सर काल जी तरफ़
0: जी सर तमामु बहितरीन सर काल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।
2: मां नज़र हुसैन थो ॻाल्हायां। सांवरे रंग जी का दवा त ॿुधायो।
0: अच्छा ठीकु आहे डॉक्टर साहबु तव्हांखे ॿुधायो थो रेडियो ॿुधो। जी सर
1: सो सांवरो रंग जे खोड़ सारा जेको आहे सो मसाइल हूंदा आहिनि छो थियो आहे। हिकिड़ो कुदरती हूंदो आहे हिकिड़ो माण्हू किथे कमु अहिड़ो कंदो आहे घणो सूरज में यानी सिज जे हेठां हुनजो घणो कमु हूंदो आहे उनजे करे थींदो आहे या ॿियूं बि खोड़ सारियूं वजूहात हूंदियूं आहिनि। उनजे करे उनजी दवा ववा जेको आहे सो पेशंट खे ॾिसी करे ऐं उनखे उन जे हिसाब सां ई जेको आहे सोप्स हूंदो आहिनि या क्रीम हूंदी आहे वरी ऐं इहो असां पहिरियां बि मनो करे चुका आहियूं हाणे बि मनो कयूं था त अहिड़े क़िस्म जूं जेके कमर्शियल क्रीम्स या सोप्स जेके तव्हांखे स्टोर्स ते मिलनि था जनरल ते उहे हरगिज़ इस्तेमालु न कयो। उहे सिर्फ़ु चमड़ी खे साड़ींदियूं आहिनि। सो इन जे करे जेको कुदरती पंहिंजो चहिरो हूंदो आहे कुदरती रंग हूंदो आहे उहो ई रहंदो आहे लेकिन चहिरे में रौनक अचणु चहिरे जी सफ़ाई अचणु उनजे लाइ अलबत्ता दवाऊं असां वटि होम्योपैथिक में क्रीम्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि जेके उनजे इस्तेमालु करण सां पंहिंजो कुदरती रंग या उन में बहितरी जेको आहे सो अची सघे थी सिर्फ़ु उन सां। उन खां अलावा फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु आहे जूसिस जो इस्तेमालु पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। जी साईं हलूं था मौज़ू जे तरफ़ त ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि कईसीं मलेरिया जी ॿियो टाइफाइड टाइफाइड बि हिन मौसम में जेको आहे सो आम हूंदो आहे। इन जे करे टाइफाइड खां बचण जे लाइ तव्हां पंहिंजा जेके बि खाधो खाईंदा आहियो बर्तन ढके रखो त पैदा जीअं उन ते मख जेको मख ॾिसो कहिड़ी बि गंदगी ते वेही करे जॾहिं अव्हांजे खाधे ते वेंदी त उहो जरासीम हुन में विझी वेंदी आहे जंहिंखां पोइ तव्हांखे जेको आहे सो टाइफाइड थी सघे थो। उन खां पोइ हींअर जीअं थोरी घणी केॾी महिल राति जो थधि पए वेही थी या केॾी महिल हवायूं लॻनि थियूं त उन सां एलर्जी ज़ुकाम नज़लो खांसी गले जूं ख़राबियूं हिन वक़्तु गले जो वायरस बि आम थी पियो आहे गले जी वरी ख़राबी थी सघे थी जंहिंजे करे तव्हांखे तकलीफ़ में अची सघो था। इन जे करे उन जे लाइ एहतियाती तदाबीर इहो हूंदो आहे जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी राति जे टाइम में पाणी गरम करे उन में हेड विझी या लूणु विझी या जाण विझी उनजा घराड़ा ज़रूरु करे। घराड़ा करण सां छा थींदो आहे जेको वायरस वग़ैरह हूंदो आहे उहो उन महिल ई जेको आहे सो उतां रफ़ा थी वेंदो आहे ख़तमु थी वेंदो आहे। पाणी गरम करे उन में लूणु विझी उनजा घराड़ा करना तमाम जरूरी है, उन नक साफ करना तमाम जरूरी है, या उन गर्म पानी की बाफ तमाम जरूरी होंगी है। अदरक तमाम एकड़ी बेहतरीन जो है सो शे है वह इस्तेमाल कर सा चाय में तुम अदरक जो टुकड़ो विझी वह चाय काढ़े वह चाय पीण से जी भी जिसम में तवे में अड़े किस्म जो एलर्जी अची वे थी कें नज़लो है जुकाम है खांसी है या गले जो वर्म है गले की सोजिश है वहाँ वह खत्म थी वी है। ये कुदरती अड़ी शन जिनको को भी नुकसान को भी साइड इफेक्ट को न वरी को एडो वो खर्चो है। ये तुम इस्तेमाल कर काफ़ी मर्जन का काफ़ी तकलीफों का तुम बची सको अड़े तरीके से तूतसिया शरबत तुम्हें शहर में आम मिली वो है वो गले के लिए तमाम मुफीद होंगे। मिठी काठी जैसे मुलेठी चवंदी मुलेठी जो है सो तमाम बेहतरीन है, उनके धोई कर चूसण से भी गले जो वायरस जो है सो खत्म थी वो है। पान की जड़ उन तमाम जो है सो बेहतरीन है। अच्छा अस इन मौसम में ऐसो गर्मी है तो यक थदो पानी पीना यक थदो पानी पीण इंतहाई नुकसानकार है। इनके कर पानी हमेशा वैसे भी नॉर्मल सजर पानी पीण घुर्ज न तो मामूली उनके थदो कर पानी पीण से अव तकलीफ़ का बची सोता सो नंढी नंढी ये शूँ जी एहतियात कर पान के बचा सोता इन मौसम में जो है सो नारों को खास ख्याल रखो है जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको खास ख्याल रखो हों सो अड़ी शुरू परहेज कौ पासो कौ तिल्कुल पान के बचा सोता इन इन वक्त यह मौसम जो सो है जैसा ते तकलीफू थी सकन थी इन तकलीफ़ों का बचाने जहाँ यही इकदाम जी असम भाई
0: तमाम बेहतरीन सर एक बेहतरीन जान दी तमाम
1: मेहरबानी।
0: प्रोग्राम है सेज गाल असने स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन महमूद साहब। डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 वगे का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। नोट अंगारे जे डी क्लिनिक बंद होंदी आए आयन में स्पेशली हफ्ते जा 3 डी जुम्मो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंदी आए बाकी दवा मरीज के स्टोर ता वठणी होंदी आए। कॉन्टेक्ट नंबर आए या लाइव कॉल जरिए तहां शामिल थी सको प्रोग्राम में 0301-9196-851 0301-219-6851।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर वाइट।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: इतनी मिर्ची खा खा के मर जाओगे एक दिन। ये लो लड्डू।
1: इतनी जल्दी थोड़ी मरूंगा, जब तक इस शहर के कोने कोने में कला न भर दूं।
0: पहले इन गोल गोल सीढ़ियों से बाहर निकलो और देखो, सारा शहर तुम्हें पगलची कहता है।
2: कला को शहर की नहीं, शहर को कला की जरूरत होती है।
0: उफ़, मेरी बला से। तो ठीक है, कल फिर आ जाऊंगी सीखने, अगर मूड हुआ तो।
2: चाच चुड़ैल एहसान करती है मुझ पर सीखने आकर।
3: मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बिल नहीं दिया तो बिजली कटने वाली है।
0: कटने वाली है।
1: जा तू बिजली खा, मुझे खाना खाने दे।
3: खाइए।
1: दिया।
0: अरे आपने खाना नहीं खाया अभी तक?
4: तेरे बिना गले से उतरता है इनके।
0: अरे माँ, कहाँ आपने इतने बड़े ब्लैकमेलर से शादी कर ली।
4: अभी भी चेत जा, बच सजनता बकवासी से।
0: कहे की बकवासी, खुद तो रेडियो टीवी पर लता मंगेशकर मुमताज के मजे लूटो और बेटी नाचे गए तो बकवासी। क्या बात कर रहे हो यार?
2: ये क्या बात करने का तरीका है, नाच नाच के दिमाग खराब हो गया तेरा।
0: स्टाइल भी तो कोई चीज होती है।
5: बोला ना नहीं जाएगी अजंता।
0: बस
5: बोला ना,
0: क्या कर रहे हो खाला?
5: बस मेजबा जाओ, मैं जाने दो जाने मेजबा।
6: अरे जाने दो बेगम, एक प्रोग्राम कर लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी।
5: आप तो भी गुजरे नहीं उसे जनता से, जब देखो नाच गाने की आवाज आती रहती है, पता नहीं क्या क्या चलता होगा वहाँ।
0: नाच गाने की आवाज आती है तो नाच गाना ही चलता होगा ना खालू।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेहराबपुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
4: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहराबपुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊ शुरू थी वयू आहिन जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वण्यायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबतो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ फॉरवर्ड कॉलेज डॉट पीके वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर, आचर ऐं सोम।

0: वठणी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32072 ऐं 4406-0100

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन

0: एंटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: हो जाए कहीं तरह के कार्ड से सब बच्चे सुनवाई हुई और हुकूमत के लिए भी क्या लॉन्ग मार्च के बारे से मैं इतना दूर होंगी जो पाकिस्तान के लिए पाने का मौका है तो पास में जन्मदिन से गए मशहूर तरीके से पीटीआई ने लॉन्ग मार्च को तो खत्म ही करना होगा मजबूत कड़ी नहीं मनसूख नहीं पोस्टपोन नहीं खत्म करना होगा नो वे क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च ये कर रहे हैं ये मुस्तकिल के एक दहशत गर्दी की कोई किसी मैसेज चल रही है चाहे वो टीटीपी जो भी है बहुत सारे ग्रुप हम जब देखते हैं कि सूरत हाल ये है हमारे लोग शहीद हो रहे हैं फौजी शहीद हो रहे हैं पुलिस शहादत हो रही है तो पीपल्स पार्टी को तो मौके नहीं रहेंगे कि हम दहशत गर्दी के ये हमारी रेड लाइन है।
1: पीपल्स पार्टी पीटीआई का एक भेरो बीहर लॉन्ग मार्च गैर मशहूर तौर खत्म करने जो मुतालबो कर छो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी हुकूमत मुखालिफ दुर विच में गाल के सुठो सवण करारींदे है मुखालिफ दुर पेंो लॉन्ग मार्च गैर मशहूर तौर खत्म कंदी पाड़ेसरी मुल्क में दहशतगर्द ग्रुपन के मिलंदड़ फाल हिमायत गणती जोगी है सेनेटर शेरी रहमान है लॉन्ग मार्च की तारीख बधायण या मुलतवी करण से मसलो हल न पीटीआई लॉन्ग मार्च खत्म करे
2: पाकिस्तान पारा मदीने में बिजली घर के निशानों बनाने की सख्त लफ्ज में मजम्मत हमला चढ़ डारींदड़ करार फौरी तौर रोकने जो मुतालबो परदेही खाते है हरमैन शर्फन की तकदस इबादत गाहन पांदेड़न की सलामत जो हर हाल में एतराम कयो वञे गैर जिम्मेवार कदमन के फौरी तौर खत्म कयो वञे हरमैन शर्फन की तहफुज पंजे अवाम की हिफाजत पांदेड़न की तहफुज लाए पाकिस्तान सऊदी अरब से कुल्लो कोल्हे में मिलाए बीठल है खिते में जटादार अमन की क्याम लाए भी कोशिशों जारी रही
1: सऊदी हुकूमत मक्के में आपघाती हमले आवर पकड़ वारिन खबरन जी तर्दीद करे छी सऊदी अख्तियार मूजिब एक शख्स के औरत के रासा करण है शहरियन के डिजारण वारी कोशिश कंदड़ शख्स के गिरफ्तार किया है सोशल मीडिया से हलंदड़ खबरन में सदा करना है

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-28-27, वधीक ॼाण लाइ 0304-28-27-274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो, पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगे गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज के गोठन में दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात।

0: मुतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद अली
3: मेहराबपुर के हो तो आप

नवमय जहिड़ी सूरतहाल पैदा करण वारी कोशिश खे सख़्ती सां मोह ॾिनो वेंदो। कोर कमांडर्स वाज़े करे छॾियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी सदारत हेठि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की सिक्योरिटी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो। हर क़िस्म जे ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ आला

कार्रवाइयूं जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी कंदड़ तालिबान क़यादत नतीजनि जी ज़िमेवार करार। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जी सारा। नेशनल एक्शन प्लान तहत अवाम जी फलाह ते ॿधल हुकमरानी। दहशतगर्दी ऐं ॾोहारनि जी गठजोड़ जो ख़ात्मो ऐं पुलिस जी सघ में वाध अंटर करार। ISPR मूजिब कंहिं बि बहाने सां इंतशार पखेड़ण या 9 मई जहिड़ी सूरतहाल पैदा करण वारी कोशिश खे क़ानून मूजिब कंहिं फ़र्क़ जे फैसलाती अंदाज़ में नाकाम बणायो वेंदो। फोरम पारां पाक, सऊदी ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुहिदे जी आजियां। कश्मीरनि जी इख़लाक़ी मदद जारी रखण वारे अज़म जो बि वर्चाउ। फील्ड मार्शल चयो त क़ौम जी हिमायत सां फ़ौज मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, इलाक़ाई सालमियत ऐं क़ौमी सलामती जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्तु तयारु आहे।

0: जो हो जाए पूरी तरीके कार्ड से सबको अपनी सुनवाई हो और हुकूमत के लिए भी क्या लॉन्ग मार्च के बारे से मैं इतना जोर होंगी जो पाकिस्तान के कुछ पानी का मौसम है तो कर्ताज में
1: हमारे
0: से गैर मशरूत तरीके से पीटीआई ने लॉन्ग मार्च को तो खत्म ही करना होगा मजबूत का ही नहीं मंसूर नहीं पोस्टपोन नहीं खत्म करना होगा सो नो वे क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये मुस्तकिल के एक दहशत गर्दी की कोई कितनी मैसेज चल रही है चाहे वो टीटीपी जो भी है बहुत सारे ग्रुप हम जब देखते हैं कि सूरत हाल ये है हमारे लोग शहीद हो रहे हैं फौजी शहीद हो रहे हैं पुलिस शहादत हो रही है तो पीपल्स पार्टी का तो मौकफ नहीं रहा है कि हम दहशत गर्दी के ये हमारी रेड लाइन है
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94